0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
1: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
0: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग कह गया
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: अगली बार फर्स्ट आ, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैंसी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंग पीओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
1: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पाकालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
7: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
8: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
9: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Tiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Man Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
12: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
13: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
14: क्या मेरी कसम?
13: मिस कर दिया तो रीलोड।
15: चाय चाय चाय
13: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
16: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
17: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, वेलकम बैक है। गुड मॉर्निंग, मंडे की सुबह है और देखिए मौसम तो हो ही रहा है भीगा भागा। आज भी बच्चों की छुट्टियां हैं, ऑफ कोर्स आज के दिन भी छुट्टी अनाउंस हो गई। मैंने आपको कल बताया था आज 28 सितंबर की सुबह है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद को। दोस्तों कहते हैं संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इसलिए अगर कोई बात आपके सामने हो रही है तो उसे जरा ध्यान से सुनिए, है ना। और कोई चीज अगर आपने संभाल के रखी है तो वो डेफिनेटली आपकी यूज में आ ही जाएगी। हम भी बस इतना ही कहना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें कभी कभी अक्सर हम भूल जाते हैं और जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। आज की सुबह भी ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके साथ हम याद करेंगे मिल करके और इस प्रोग्राम को और भी खास बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां ढेर सारी बातें होंगी दिल से दिल तक। श्रोताओं आप बस ऐसे ही हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा, टिके रहिएगा और ऐसे ही अपना साथ निभाते रहिएगा, बिकॉज आज अच्छे अच्छे गाने और अच्छी अच्छी बातें आप तक जो है हम पहुँचाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। और आज का जो प्रोग्राम है मेरा स्पेशल जो है हम डेडिकेट करने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसने हमें एक्चुअली में जो है म्यूजिक का मतलब सिखाया। मैं कौन सी सिंगर की बात कर रहा हूँ, सुनिए ना आप। तो आज के सफर की शुरुआत कुछ इसी आवाज के साथ होगी, खूबसूरत आवाज जिसने हमें बहुत प्यारी प्यारी जो है म्यूजिक के साथ साथ मधुर मधुर गीत, मधुर मधुर सुर, मधुर मधुर मतलब जिसे कह सकते हैं पूरा म्यूजिक का एक ऑरा दिया है। तो आज की सुबह उनके नाम डेफिनेटली मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आप उनको जानते हैं और हम सब जानते हैं। चलिए अभी बताऊंगा किनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, 8:24 हो गए जी, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: जो समय है ना बहुत पावरफुल है दोस्तों। कहते हैं समय जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कैसा भी समय हो, कैसी भी मुश्किल का टाइम हो, वो बीत ही जाता है, एक ना एक दिन वो गुजर ही जाता है। ये समय की खासियत है ना। वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। घड़ी मिला लीजिए, 8:37 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे RJ आनंद को। और आप बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं तो छाता अपने साथ लेकर जाएं। वेदर की बात कर लेते हैं तो करंट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अभी जो करंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे कितना रहने वाला है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर 27 डिग्री पहुँचेगा, लोएस्ट की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस जो है पहुँचने की संभावना है। हवाएं जो है वो 2 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है और बाकी मौसम आज भी एकदम भीगा भागा ही रहने वाला है। आज भी दिखाई जा रही है बारिश, है ना। वैसे सूर्य देवता के निकलने के आसार बहुत बहुत कम है, लेकिन अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आज की वो मैं देख पा रहा हूँ बारिश आज भी दिखा रहा है। तो ऐसे में आप जो है प्लीज सतर्क रहिए। अगर आप पानी वाले एरिया में रहते हैं तो जरा सावधानी के साथ जो है स्पेशली बच्चों का बहुत ख्याल रखें। श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद और इस वक्त सुबह का टाइम है, मॉर्निंग मैगजीन शो आपका चल रहा है। तारीख है आज 28 सितंबर। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल भी रहा था कि आप मुझे बताएं, आज जो है हम एक ऐसे आवाज़ का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जिनके गाने सुन सुन के हम रेडियो पर बड़े हुए हैं और खूबसूरत गाने इनके सुनकर तो सच में आनंद आ जाता है। और चलिए इनके कुछ गाने प्ले करता हूँ, आप बताइएगा कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ मैं आज की सुबह। एक और गाना सुनाता हूँ इनका, एक और कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ। कौन सी सिंगर की आवाज है ये, सुबह सुबह आपको काम पे लगना है। आज के दिन इस आवाज का जन्म हुआ था। एक और बड़ा फेवरेट है मेरा ये गाना, अगला। हाय हाय जिंदगी हैरान। एक और, अब तक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा आज कौन से सिंगर की बात करने वाला है आनंद। सो ब्यूटिफुल मोस्ट पॉपुलर ट्रैक, इस गाने ने बताया है हम आवाज की दुनिया में जो काम करते हैं। व्हाट्सएप करें आप मुझे 9837896896 पर। कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ आज की सुबह, अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर। और अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत आवाज। चलिए जी, चलिए आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे, फटाफट से व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं आज की मॉर्निंग में कौन सी सिंगर की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ टेल अस 9837896896 पे। फिलहाल मेरा बड़ा फेवरेट गाना है फ्रॉम द फिल्म अभिमान का ये गाना, एंड व्हाट अ सॉन्ग, क्या लिरिक्स हैं इस गाने के, आप सुनोगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही गाना प्ले कर रहा हूँ आपके रेडियो पर, इंजॉय करते हैं साथ में। अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, लता मंगेशकर जी साथ दे रही हैं। सच अमेजिंग ट्रैक, वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करें। शो सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा गाना है।
1: तेरी बिंदिया रे,
0: हाय हाय
1: हाय तेरी बिंदिया रे,
0: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, एंजॉय करें ना।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

सच में यार पुराने गान दोस्तों बात होती है वो बहुत ही अलग होती है। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है, आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग, और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं, जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। दिल दिल प्यार

गाना, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी रोमांटिक गाना, सुबह सुबह सुन के आनंद आ गया मेरे को तो, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छे लग रहे होंगे आज के ट्रैक। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन, आपने मैंने आपको पहले बताया है ट्यूनिंग क्या है, मॉर्निंग मैक्सिमेशन शो, जहां बातें हमेशा वो वाली होती है जो आपका दिल चाहता है। मेरे दोस्त, बात करते हैं आज 28 सितंबर की तारीख की, खास इतिहास के पन्नों के लिए। श्रोताओं, आपको बताते हैं 1837 में आज के दिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जाफर ने दिल्ली का जो है शासन आज के दिन संभाला था श्रोताओं। और आज के दिन अमेरिका ने चीन की चिंग काई शेख सरकार को मान्यता दी थी 1928 में आज के दिन। आपको बताते चलें एक और खास चीज़ आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। सन 2004 में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। इसके अलावा आज और भी ऐसे बहुत सारे खास महत्वपूर्ण दिवस है जो हम मनाते हैं, और आज के दिन और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के दिन हुई हैं, आज की तारीख में हुई हैं। अगर हम उन बातों पे जिक्र करेंगे तो श्रोताओं शायद हमारा समय थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको बता दें इंडोपिया ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता छोड़ी 1923 में आज ही के दिन। और इसके अलावा इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य बना था सन 1950 में, और फ्रांस में भी संविधान लागू हुआ था 1958 में आज ही के दिन। इसके अलावा यान रूस की धरती पर सुरक्षित उतरा था सन 2003 में श्रोताओं आज ही के दिन। और स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा पैन पैसिफिक ओपन के पहले राउंड में हार के बाद, मतलब जो है राउंड में हारने के बाद वो बाहर हुई थी आज ही के दिन सन 2003।

शिरडी साई बाबा आध्यात्मिक गुरु रहे, उनका भी जन्म हुआ था सन 1836 में आज ही के दिन। और भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं जानता, आज ही के दिन जन्म हुआ था भगत सिंह जी का सन 1907 में। श्रोताओं, और अगर बात करें एक और एक ऐसे ही नाम की जिन्होंने सच में कुछ कमाल कर दिखाया, तो उनका नाम है राजेंद्र मल। इनका जन्म हुआ था 1949 में, भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश रहे। श्रोताओं, और आज के दिन बॉलीवुड में एक ऐसी खूबसूरत म्यूज़िक की दुनिया में एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है, उन्हीं की आज मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर में उनका नाम हम यहाँ पर ज़रूर अनाउंस करेंगे, आपके सामने रिवील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका भी दिमाग के हम घोड़े दौड़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड के एक और खूबसूरत अभिनेता का हम जन्मदिन आज सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बाकी श्रोताओं, अगर आप में से किसी का आज जन्मदिन होता है तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आप ऐसे ही आनंद के साथ बने रहिए, आपको तमाम जानकारियां और तमाम सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेशन के जरिए से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9837896896 पे बताइए ये गाने कौन से सिंगर पर पिक्चराइजेशन, आई मीन कौन से सिंगर की आवाज़ में है, इन सिंगर का नाम बताना है। कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ इनकी आवाज में। हाय हाय, यही कोई मिल गया था। एक और सुनाता हूँ। अगर आप समझ गए हैं कौन सी वंडरफुल सिंगर हैं ये, तो आप मुझे मैसेज करिएगा। सच में यार, गाने नहीं हैं इनके, रियल जिंदगी से मतलब जो है मुखातिब करा देते हैं। हाय हाय, नौ बजने को हैं, आप मुझे मैसेज करिए जो गाने अभी आप सुन रहे हो कौन सी सिंगर पर जो है किन की आवाज में है, कौन से सिंगर की आवाज में है। एक और इनका मोस्ट पॉपुलर ट्रैक प्ले कर रहा हूँ जिससे आप पहचान जाएंगे। चलिए मैसेज करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। और आप ऐसे ही प्लीज ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। 9837896896 पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह और ढेर सारी बातें कर सकते हैं मेरे साथ। अभी हम लौट कर आते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही प्लीज सुनते रहिए और ऐसे ही ट्यून इन रहिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वक्त हुआ है 9:59, मतलब सिर्फ एक एक एक मिनट बचा हुआ है 9 बजने में। और मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा गीत आपके लिए मैं प्ले कर दूँ अपने रेडियो से और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये खूबसूरत नगमा निकाल रहा हूँ मैं, आप एंजॉय कीजिए इस नगमे को और ऐसे ही मेरा साथ निभाते रहिए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
9: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: और बिल्कुल पास ही जब हम आते हैं तो आपको नचाकर ही जाते हैं। फ्रेश मंडे मॉर्निंग है। हाय वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 विद मी। और कभी कभी ना लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं, कभी आपके कम्युनिकेशन से जज करते हैं, मतलब लोगों की आदत है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जज करता है भाजी करने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे रहते हो ना भाई वैसे रहो। अगर आपको देसी स्टाइल पसंद है तो भैया आप देसी स्टाइल ही फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो तो आप वही करो भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इस घंटे की थॉट बस इतनी है भाई। देखो दुनिया है, सबके नजरिए को हम नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलने का काम सिर्फ हमारा है। ज्यादा लोड नहीं देनी चाहिए पाजी, जो आपके मन का हो वो चीज करो यार। वैसे भी आज मंडे है। जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं ऑल द वे बेस्ट यार। आप सुन रहे हैं आनंद को और आपके सफर का साथ ही एग्जैक्टली रहने वाला हूँ आपके साथ 10 बजे तक। मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी ढेर सारी बातें आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो यार फिर क्या पता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। 2 अक्टूबर को नो UPI डे मनाने की बात हो रही है, इस पे अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ ये कितनी सच है बात। इसके अलावा ATM यूजर्स के लिए खुशखबरी निकल कर आई है, उस पे भी हम अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। आपको बता दें मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते आज 28 सितंबर को भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल्स बंद हैं। आपको पता है अपने मुरादाबाद में भी, और इस मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी जल भराव हुआ है अपने मुरादाबाद में। मतलब काफ़ी जो है मतलब हर तरफ वाटर लॉगिंग हो गई है यार। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी बारिश नहीं है, आज भी बारिश है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आप जहाँ भी जा रहे हैं प्लीज़ छाता ज़रूर कैरी करें साथ में। बाकी आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूँ, जरा सी देर मैं भी लौट कर आता हूँ। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ। और बाकी तमाम सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और हमारे साथ ढेर सारे लिसनर्स हमारे जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक बहुत ही रॉकिंग सुपरस्टार का बर्थडे होता है। ये कमाल का लड़का है यार, इनका गाने ही कमाल के हैं। 28 को इनका जन्मदिन सेलिब्रेट होता है।
3: मैं यूं ही झुकता हूं तुम पे ही आग।
2: ये गाना सुनो अगला वाला। कौन सा हीरो है पता है क्या? अच्छा अगला। आहा मोस्ट रोमांटिक एंड हार्ट टचिंग सॉन्ग, एक और सुनाता हूँ। देखो रेडियो पे आपको सब पता लगता है। ला ला ला ला, आज एक बहुत ही अच्छा डी बनाया जाता है। हाय हाय, अभी लौट कर आऊँगा तो बात करूँगा इस पर। आज कौन से सिंगर का बर्थडे है? आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी। बस अभी आ रहा हूँ मैं लौट कर, उसके बाद बताता हूँ जो आपने जवाब पहुँचाए हैं सही उसका अभी खुलासा करेंगे। एक सवाल होगा उसका भी जवाब आप मुझे देंगे, और ढेर सारी बातें जो है वो चलती रहेंगी ऐसी। मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ भी हैं, किचन में, घर में, रोड पे हैं, शॉप में बैठे हैं, आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर एनर्जेटिक बनाने के लिए मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कि ट्रैफिक में है तो भी आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop.
1: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: जरूरत है

0: अगर आप खाना खा रहे हैं, मतलब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप ये करते वक्त कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो भाई मत करो ऐसा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलिए आपको बताता हूँ। 9:15 हो रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। वेरी गुड मॉर्निंग हेल्थ जी। हाँ जी, देखो भैया, एक रिसर्च में भी जो है पता लगा है कि देखिए, भोजन करते समय कुछ और ना करें, हाथ में फोन, सामने टीवी और दिमाग में कई तरह के विचार अगर आप लेकर के भोजन करते हैं तो भैया ये भोजन जो है ना आपके शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व है वो नहीं दे पाता, ऐसा भी पता लगा है रिसर्च में। तो इसीलिए जब भी आप खाना वगैरह खा रहे हैं, मतलब आप लंच ब्रेकफास्ट या आप डिनर जो भी आप कर रहे हैं, उसे करते टाइम सिर्फ आपका फोकस आपके खाने पर होना चाहिए। क्या होता है ना, हम जल्दबाजी में जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उसे इतने अच्छे से नहीं चबा पाते हैं कि जो सच में उसके अंदर की चीज़ें वो हमारी बॉडी को मिले। हम जल्दबाजी में रहते हैं, आजकल के लाइफस्टाइल बहुत भाग दौड़ वाला है, इस चक्कर में जो है बस हर चीज़ हम जल्दबाजी में जो है निपटाना चाहते हैं कि फटाफट से चीज़ हो जाए और हम फटाफट से जो है मूव ऑन करें, इधर जाएं उधर जाएं, जो भी आप कर रहे हैं मतलब। एंड हर किसी को बहुत जल्दी होती है और आजकल के तो बड़ा मतलब अजीब सी रिचुअल्स बन गई है हर किसी की कि फ़ोन तो डेफिनेटली देखना है खाना खाते टाइम। तो यार मैं कहता हूँ, जब भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ बैठ रहे हैं तो दिस इज़ द फैमिली टाइम है ना, तो उस टाइम पर अगर आप फ़ोन को ना ही इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूँगा कि अपने एक तो सोने वाले रूम में और दूसरा अपने खाने वाले टेबल पर फ़ोन को जितना हो सकता है ना स्किप करो यार। हाँ जी भैया, बहुत ज़रूरी है वरना तो दिक्कतें हो जाएंगी। और आपको बता दें, बताया जा रहा है कि भैया देखिए, जब भी आप शुरुआत करें, अगर किसी भी हैबिट में, एडिक्शन में आप पड़ गए तो उसकी शुरुआत वन टाइम से करें। एक साथ अगर आप कोई भी चीज़ को करेंगे तो एकदम से नहीं होगी। अगर आप खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो एक टाइम का खाना जो है उसके बिना खाना शुरू करें। धीरे धीरे छोटी छोटी जब आप ये हैबिट बनाएंगे, रूटीन्स बनाएंगे, इसको रूटीन में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे ये आदत आपकी चेंज हो जाएगी है ना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भैया वर्तमान में लौटने का अभ्यास करें। माइंडफुल जो है डाइटिंग का मकसद खाने का तरीका बदलना नहीं है, बस ये भोजन की जो प्रक्रिया है उसको अनुभव करना है। ये अभ्यास आपको सिखाता है कि जब भी आप जो है दूसरे काम पर लगते हैं तो उससे आपका दिमाग और आपका फोकस दोनों जो है हट जाता है। तो इसीलिए जब भी आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, प्लीज़ उसका जो भी आप चीज़ खाते पीते टाइम करते हैं वो चीज़ आप अवॉइड करें, है ना। चलिए फिलहाल ये छोटी सी काम की बात, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया आज की सुबह जो है बहुत ही दिग्गज लोगों का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर पहले एक आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी कि बताइए आप मुझे कौन सी आवाज़ का बर्थडे है। एंड सीरियसली आप लोगों ने बहुत ही सारे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपको बताते हैं, बारिश ने जो है रिसेंटली जो ये बारिश हुई है 72 घंटों से ज़्यादा हो गए इस बारिश को होते होते, इस बारिश ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन 2 से 3 दिनों की बारिश ने जो है लोगों के जीवन को जो है अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त करके रख दिया है भाई साहब। और सिर्फ मुरादाबाद में नहीं है, आसपास के तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आसपास के ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ही कड़क बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को जो है नुकसान भी हुआ है। और अब तो भैया यही है कि ये बारिश ना हो तो ही अच्छा है, अब तो बस रुक जाए यार किसी भी तरीके से। आपको क्या लगता है, जो बारिश हो रही है क्या इससे सर्दियां वापस आ सकती हैं, या फिर ये बारिश जो हो रही है बस नॉर्मली बारिश हो रही है, इस बारिश का क्या मतलब हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये बारिश मुझे लग रहा है भाई बीमार कर सकती है अगर आप इसमें भीगेंगे तो। कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा सवाल वापस लेकर आता हूं इस स्टेशन पे। आप ऐसे ही आनंद के साथ ट्यून इन रहें, एंड आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: बिल्कुल जी बिल्कुल, नाचने के लिए और नचाने के लिए तो हम यहाँ बैठते हैं। आपको भैया ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं साथ ही साथ। 9:20 हो गए स्टेशन क्लॉक में। और भाई साहब देखिए, आज की सुबह मैं तीन बातें आपको बताने वाला हूँ मुरादाबाद शहर से जुड़ी। बस जरा सी देर में लौट कर आऊंगा तो उस पर हम बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की सुबह अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ी है मेरे साथ सही जवाब के साथ। बिकॉज आज मैंने आपसे पूछा था, आज बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऐसी सिंगर का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी आवाज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने वाकई में हमें म्यूजिक का मतलब सिखाया है। हाय हाय, मैं पूछ रहा था कौन सी आवाज है ये। बस इस आवाज को आइडेंटिफाई करना था। अट्ठाईस सितंबर की तारीख। Exactly. आप समझ गए कौन सी आवाज है तो बता दो मुझे फटाफट से। व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे। ढेर सारे लोग मुझे सही जवाब दे रहे हैं। देखिए सही जवाब पहुंचा है अलका वर्मा जी का बुद्धि बिहार से। श्वेता का जवाब पहुंचा है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाए हैं आज की सुबह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिनका बर्थडे है उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जिनकी आवाज़ों में अभी आप सुन रहे हैं। बताऊंगा अभी मैं कौन है ये कमाल की आवाज़, इनके बारे में अभी जिक्र करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आज जिनका बर्थडे है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मतलब एक और कमाल के आर्टिस्ट का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं एंड उन्हीं के गाने अभी मैं आपको सुनवा रहा हूं इस घंटे। उन्हीं का एक और गाना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया आपके रेडियो सेट पर। कुछ मूवी है जो आज के दिन रिलीज हुई थी और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया की आज के दिन। डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी थी यार, ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म थी ये। आज के दिन रिलीज हुई थी, कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ, लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा। आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहें और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एंड अगर आप समझ गए आज कौन सी बॉलीवुड सिंगर का जो है जन्म हुआ था आज ही के दिन, तो आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये मैसेज पहुंचा है शुभम जी का, इन्होंने राइट आंसर दिया है। एक और मैसेज पहुंच गया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, आप कैसे हैं, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। ये लिखते हैं आपका शो सुन के काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक और मैसेज आया, सुप्रभात आनंद जी कैसे हालचाल हैं। ये कशिक मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, हाय कशिक थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एक मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद भाई कैसे हालचाल हैं। ये मुझे स्वाति सिंह मैसेज कर रही है, हेलो स्वाति जी गुड मॉर्निंग, सही जवाब दे रही है, थैंक यू। एक मैसेज पहुंचा है, हेलो राधे राधे कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग राधे राधे जी, मैं बढ़िया हूँ, इन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है। क्या है राइट आंसर बताता हूँ, अभी लौट कर आता हूँ। लेकिन आप सभी ने बहुत सच में आंसर्स जो है कड़क पहुँचाए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने अच्छे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी लौट कर आएंगे तो आपसे और भी ढेर सारी बात करेंगे इस स्टेशन पर, आप ऐसे ही सुनते रहिए आनंद को। और बाकी आप लोग कोई भी अपडेट है तो हमें पहुँचा सकते हैं मैसेज के माध्यम से, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आज की सुबह। चलिए फिलहाल आपके लिए तालियां, थैंक यू गाइज, लौट कर आते हैं फिर आपसे बातचीत करेंगे इस स्टेशन पर।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: यू आर लिसनिंग टू

0: सुबह सुबह मूड रोमांटिक मुझे मंडे की सुबह डीडीएल जी का खूबसूरत ट्रैक आज के दिन जन्म हुआ था इस खूबसूरत आवाज का। क्या बात है यार, किन की बात कर रहा हूँ मैं? बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज जिनका जन्म आज के दिन हुआ और बहुत देर से इनके बारे में बात कर रहा था मैं। आपके लिए तालियां, थैंक यू सो मच। अभी बस एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं फटाफट बताता हूँ भैया क्या है पूरा माजरा।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है, और आज जिस आवाज की मैं बात कर रहा था उनका नाम है लता मंगेशकर। यस, एग्जैक्टली 28 सितंबर को ही जन्म हुआ था आज ही के दिन उनका, एंड जिसको सुनकर हिंदुस्तान की कई पीढ़ियाँ बड़ी हुई हैं। स्वर्ग की कोकिला उन्हें कहा जाता है, भारत रत्न से सम्मानित है लता दी। और आज ही के दिन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। लता जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन है। दोस्तों आपको बताते हैं लता मंगेशकर जी के जन्म का जो नाम था वो हीमा मंगेशकर था, और उनका जन्म आज के दिन 28 सितंबर को हुआ था 1929 में, और उनका स्थान बता दें आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था। श्रोताओं कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संगीत और अभिनय की शुरुआत की, और उनका पहला रिकॉर्ड किया हुआ प्लेबैक मराठी गीत काफी पॉपुलर हुआ, और उसके बाद जो है सिलसिला रुका ही नहीं। काफी सारे गीत हैं लता दी की आवाज में। बताया जाता है कि उनके करियर में लगभग 70 वर्षों तक जो है उनका ये करियर का सिलसिला चला, जिसमें उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। और अगर मैं गीतों की बात करूँ तो लगभग हजारों से भी गीत जो है उन्होंने गाए हैं, और कितनी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं शायद अगर ये मैं बताऊँगा तो मेरा समय कम पड़ जाएगा। और कितने गीत लता दी के हैं, ऑफकोर्स अगर हम पूरा दिन भी उनके गाने चलाएंगे तो शायद हमारा ये दिन कम पड़ जाएगा। आपको बताते चलें पद्म भूषण से सम्मानित हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, एंड इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण से भी जो है ये सम्मानित हैं। इसके अलावा उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। क्या बात है, तो हमारी तरफ से ढेरों ढेरों ढेरों श्रद्धांजलि आज उनके फैंस को बहुत बहुत हम तो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज शत शत नमन है ऐसी सुरु की कोकिला को। हमारी तरफ से तो वह हम शत शत नमन करेंगे, और सच बताऊं तो उनके गाने सुन के ना सच में आपको भी जरूर आनंद आता होगा। चलिए हमारी तरफ से ढेरों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं उन सभी लिसनर्स को जो लता दी को बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा जो लता दी की आवाज पसंद ना करता हो। फिलहाल इसके अलावा आपको आगे बताते चलें, आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं रणवीर कपूर जी का भी। एग्जैक्टली ये भी बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि आज लता दी के साथ साथ हम रणबीर कपूर का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और तमाम सारे गाने जो हैं आज उनके ऊपर पिक्चराइजेशन आप सुन रहे हैं यहाँ पर इसी स्टेशन पर। ढेर सारी बातें मैं कर रहा हूँ आपके साथ, और आपके मैसेज भी लगातार मुझे मिल रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास ढेर सारे लोगों ने सही जवाब पहुँचाए थे। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम प्रियांशी है। गुड मॉर्निंग प्रियांशी, इन्होंने मुझे सही जवाब दिया था आज की सुबह। इसके अलावा मेरे पास शिखा जी ने राइट आंसर पहुँचाया था, एंड मेरे पास तमन्ना का भी सही जवाब पहुँचा था आज की सुबह। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा था, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, कैसे हो आप? सुबह सुबह आपका रेडियो सुन के काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनने में, एंड काफी जो है आप अच्छी जानकारी देते हो। थैंक यू सो मच, हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है भाई साहब कि हम रेडियो पे जब भी आए तो आपके लिए कुछ अच्छी और बेहतरीन जानकारियां लेकर आए। एक और खूबसूरत गीत का समय है प्रोग्राम में, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अभी आगे बढ़ेंगे। तू झूठी मैं मक्कार, ये मूवी का नाम है यार, अरिजीत सिंह की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक। इस गाने को सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक वॉइस नोट हमारे पास पहुंचा है तो इमीडिएटली जरा सुन लेते हैं आज की सुबह।
3: हाय आनंद जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर।
3: स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जन्म दिवस पर शत शत नमन।
0: बिल्कुल
3: लता जी, आपकी आवाज सिर्फ संगीत ही नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन थी।
0: बिल्कुल,
3: आपके गाए गीत आज भी उतने ही मधुर है।
0: बिल्कुल,
3: और हमेशा हमारी यादों में गूंजते रहेंगे। आप भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके सुर कभी खत्म नहीं होंगे। हैप्पी बर्थडे लता जी, आपकी आवाज अमर रहे। थैंक यू। मैं अविनाश रत्नाकर।
0: थैंक यू विनाश भाई, थैंक यू सो मच। आपने सच में बहुत खूबसूरत बात की है, और सच में मतलब कुछ आवाजें ना हमेशा अमर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज की तारीख में आपका बर्थडे है, तो आप अपना बर्थडे लेजेंडरी के साथ सेलिब्रेट करते हैं।

यार सोचो, अगर आप ऑफिस में 30 दिन काम करो और सैलरी आपको 28 दिन की मिले तो कितना अजीब लगता है ना, है ना। ऐसे ही कुछ हमारे साथ हो रहा था, लेकिन अब जो है वो सेटअप हो गया है ठीक। किस चीज की बात कर रहा हूँ? हाई, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी तक होता ये था भैया कि हम रिचार्ज करा रहे हैं, भैया 28 दिन का पैसा दे रहे हैं 30 दिन का, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी थी हमारे साथ। लेकिन फाइनली जो है अब चीजें ट्रैक पर आ गई हैं, और इस बात को लेकर आप भी जो है एक्साइटेड हो चुके होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ यार। यस, अब रिचार्ज जो है आपका 28 दिन नहीं बल्कि 30 दिन चलने वाला है आपका रिचार्ज प्लान। थोड़े दिन पहले जो है राघव चड्ढा जी ने इस पर बातचीत करी थी, एंड फाइनली उसको लेकर कल उनके वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुए और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी हो गई ये बात कि भैया अब सरकार का जो ये मतलब फैसला है वो चेंज हो गया है कि अब जो है आपको रिचार्ज 28 नहीं बल्कि 30 दिन का पैक मिलेगा। और ऑफकोर्स यार, अगर हम रिचार्ज 30 डेज का कराते हैं तो फिर हम 28 दिन का पैक क्यों ले? और कभी कभी बड़ा दुख भी होता है यार, है ना। तो अब अगर आपको ये 30 दिन वाला ऑफर मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई। और मुझे भी ये जानकर के बहुत खुशी हुई। और आपको कैसा लगा ये वाला जो अभी नया चेंज हुआ है, और अब ये चेंज जो है कब से लागू होगा ये तो ऑफकोर्स आपको चली चुका होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा अभी। एंड फाइनली ये जो चीज हुई है ये बहुत ही अच्छी हुई है कि चलो फाइनली एटलीस्ट कम से कम कुछ तो बेटर हुआ यार, कुछ तो अच्छा हुआ ना। अगर दो दिन भी हमें हमारे पूरे मिल रहे हैं तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है यार। तो गाइज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अभी मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब देकर आज आप जीतेंगे एक बहुत ही प्यारा वाउचर। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग घूमे नहीं हैं साथ में, तो मैं सोच रहा हूँ आपको अपने साथ लेकर जाते हैं और कहीं घुमा कर लेकर आते हैं बढ़िया सी जगह। तो अगर आप हमारे साथ घूमना चाहते हैं इसके लिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन उससे पहले इमीडिएटली जरा ये जान लो, जेमिनाई लाइफ को मिला एक नया अवतार। जी हाँ, अब AI जो है चेहरे और आवाज़ के साथ करेगी आपसे रियल टाइम बातचीत। एग्जैक्टली क्या है पूरा फंडा, मैं आपको बता दूं। BBC की रिपोर्ट में पता चला है कि गूगल ने जेमिनाई लाइव विद लाइव अवतार फीचर पेश करने का एक ऐलान किया है, जिसमें AI आवाज़ के साथ कैमरे में विजुअल इनपुट को भी समझ सकेगी। लाइव अवतार बातचीत करने के दौरान इंसान जैसी फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड इसमें जो है आपको ऐसा फील होगा जैसे आप सच में किसी से लाइव बातचीत कर रहे हो, और रियल टाइम जवाब ये देगा आपको। गूगल के मुताबिक ये फीचर 97 भाषाओं में जो है बातचीत करने के लिए सपोर्ट करेगा। इन भाषाओं के अनुसार आवाज़ और एक्सप्रेशन भी बदल पाएगा। क्या बात है यार, कंपनी इसका इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट, विजुअल असिस्टेंस एंड प्रोडक्ट डेमो और जो है कुछ गाइड करने के लिए कामों में जो है आपको हेल्प करेगी। AI से बनी वीडियो और ऑडियो की पहचानने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये एक नई चीज़ जो है अब आपको मिलने वाली है। गड़क अपडेट आपको देता हूँ। सहारनपुर में जो है जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वाली बसें दौड़ने वाली हैं, जिसका वेलकम करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अब इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है वो चलेंगी। काश ऐसा मुरादाबाद में भी हो जाए।

अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रिचार्ज के बारे में बताया, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अब साल में 13 नहीं, अब 12 बार ही आपको रिचार्ज करना होगा। पहले क्या होता था भाई, मोबाइल कंपनी 28 दिन का जो है मंथली प्लान देती थी और सालाना 13 बार कराना पड़ता था रिचार्ज, आई मीन, है ना। लेकिन अभी नए नियम जो है रूल लागू हुए, नए रूल्स, इसके मुताबिक आपको बता दें 30 दिन का रिचार्ज प्लान आपको मिलेगा, साल में 12 बार ही आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, वॉइस एसएमएस ओनली प्लान। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो है आप अपने जरूरतों के हिसाब से अपना प्लान, अपने ऑप्शंस आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज हो गई है भाई साहब, एक बढ़िया, यू नो, एक अच्छी जिसपे पॉजिटिविटी वाली हम नजर डाल रहे हैं, अच्छी चीज है। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या है आज का सवाल जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं कि एक्साइटिंग वाउचर। जरा सी देर में लौट कर आता हूँ, फिर आपसे उस सवाल के बारे में बात करूंगा। फिलहाल के लिए आने वाला गाना एंजॉय कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: चलो वेलकम बैक ही वंस अगेन। और आज रणवीर कपूर का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप मुझे फटाफट से इमीडिएटली एक उनकी मूवी का डायलॉग प्ले कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर मूवी एंड बहुत ही अच्छी मूवी है। दो लोग होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहीं से इनकी स्टोरी शुरू होती है। बहुत ही अच्छी, लड़का कुछ बड़ा करना चाहता है, लड़की ट्रैवलिंग की शौकीन होती है। मूवी बहुत अच्छी है, स्टारिंग बाय नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पकड़ लोगे यार, है ना। रणवीर की मूवी है, बस इतना समझ लो। एक डायलॉग प्ले कर रहा हूँ उनकी मूवी का, बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है। इवन कई बार हमें मोटिवेट भी करता है डायलॉग, एंड ये मोटिवेट तो नहीं लेकिन एक अच्छी चीज सिखाता है हमें। ये कौन से फिल्म का डायलॉग है, कौन सी फिल्म की बात करूं?
2: 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
1: अगर आपको समझ में आ गया है कौन सी फिल्म का डायलॉग है, तो इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। आज रणवीर कपूर का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है 28 सितंबर की सुबह, मंडे मॉर्निंग है। अगर आप जीतना चाहते हैं कि एक्साइटिंग वाउचर, तो आप मुझे बताओ जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म का है। इसमें भाई साहब का नाम बनी था एंड मैडम का नाम नैना था।
2: 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
1: अगर आप समझ गए हैं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, तो जल्दी से बताओ, मुझे इंतजार है आपके मैसेजेस का। और फिलहाल अभी हम सुनाते हैं आपको एक बढ़िया सा एड ब्रेक, सुनो जरा इसको।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: हेलो जी, हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक है। और अभी आपको तीन कड़क बातें बताते हैं मुरादाबाद से जुड़ी। और सबसे पहले तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जान लो आप। 10 बजने को है, ये मंडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं आनंद को। आप लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, तो बहुत बढ़िया यार, ऑल द वे बेस्ट यार। आप मॉर्निंग ड्राइव पे हैं, अच्छी बात है, हम मॉर्निंग शो पे हैं और मैं हूँ आपके सफर का साथी। आपने सही फ्रीक्वेंसी ट्यून इन की है, दिस इज 89.6 विद मी। अभी सबसे पहले आपको काम की बात बताता हूँ भैया। देखिए, साइबर ठगी हुई है तो भैया आप इन नंबर पे डेफिनेटली सूचना दे सकते हैं। आजकल यार पता नहीं चलता है ना, एकदम से साइबर ठगी हो जाती है और हम ऐसे में बड़े पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम कहाँ पर कंप्लेन दें, क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए भैया शहर में साइबर ठगी की घटना अगर हो रही है, और ये काफ़ी बढ़ भी रही है मुरादाबाद में भी स्पेशली, ये बहुत हो रही है, तो अगर आपके साथ भगवान ना करे कोई दिक्कत अगर आपके साथ ऐसी हुई है किसी आपके रिलेटिव में या नॉन में है, तो आप उनको नंबर डेफिनेटली बता सकते हैं। साइबर ठगी के लिए मैं आपको कुछ नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, इन नंबर पर आप डेफिनेटली कॉल करके अपनी शिकायत दे सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले नंबर है 9454401742। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9454401742। एंड सेकेंड नंबर है 7839876646। ये नंबर पे जो है आप साइबर ठगी अगर किसी के साथ हुई है या आपको लग रहा है कि भैया किसी के साथ ये धोखाधड़ी वाला मामला हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर 7839876646। एंड अगर भैया बिजली से संबंधित कोई शिकायत है तो अगेन एक नंबर और दे देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भैया लाइट से जुड़ी कोई भी समस्या है, आपको लग रहा है कि आपको कंप्लेन करानी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ भाई साहब, नंबर रहेगा अपन का 9193300109। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाँ जी, बिजली से किसी भी संबंधित या किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर जो है आप इनके विभाग के कंट्रोल रूम नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या, अपनी शिकायत बता सकते हैं। नंबर बता देता हूँ फिर से, 9193300109। इस नंबर को सेव करो। चलो भैया मौसम की बात भी कर लेते हैं, तो अभी 29 डिग्री सेल्सियस बता रहा है एंड 20 डिग्री जो है पहुंच सकता है फिलहाल। अभी करंट की बात करते हैं तो 24 है करंट टेम्परेचर, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, 10 बज गए, कुछ एड ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं थोड़ी देर में। आप ऐसे ही हमारे साथ सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अभी।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग

0: चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
1: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: काले काले बादल हो रहे हैं, उसी बीच में आप छम छम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीट बेल्ट लगा के आराम से चलाओ यार, भागो मत। वंस अगेन वेलकम बैक है। आज की सुबह में आपको एक फैंटास्टिक वाउचर दे रहा हूँ। आपसे पूछा है मैंने बहुत ही आसान सवाल। एक रणवीर कपूर की दीपिका पादुकोण के साथ मूवी आई थी, बनी और नैना का कैरेक्टर था, ट्रैवलिंग पे पिक्चर थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जीना सिखाया लाइफ ने, काफी अच्छा क्लाइमेक्स था एंड एक डायलॉग प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म का। मुझे बताओ रणवीर कपूर का आज बर्थडे है, कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं उनकी, और ये डायलॉग उनकी कौन सी पिक्चर का है?
1: 22 पे पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
0: अगर आप समझ गए हैं कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो इमीडिएटली मुझे बताओ मैसेज करके। बनी एंड साथ में है इनके नैना यानी दीपिका पादुकोण, बहुत अच्छी फिल्म है। आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ सही जवाब 9837896896 पे। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ ये डायलॉग, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो यार।
1: 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
0: चलो जी, अभी अगर आप समझ चुके हो ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो आप मुझे जरा जल्दी से बताना एंड अगर आपने दिया मुझे बढ़िया आंसर तो मैं आपको दूंगा एक बढ़िया वाउचर। कौन से वाउचर हैं ये पता लगेगा आपको जरा सी देर में, जो विनर होगा उसको कॉल भी जाएगा तो और आप हमारे साथ फिर घूमने भी जाओगे तो आप एक्साइटेड होना है, मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे। तो इमीडिएटली व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। मंडी की सुबह आने वाला गाना शीशा, मैं जरा देख कर रहा हूँ क्या। चलिए आप ऐसी ट्यून ही नहीं आने के साथ कहीं मत जाइए। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: ओ मैं तो देख देख शीशा शर्मंदे फिरो सो, ओ मैं तो देख देख शीशा शर्मंदे फिरो सो, देख देख शीशा शर्मंदे फिरो सो।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
2: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय,
7: बिंदास मॉर्निंग
4: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: जाने का टाइम, जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन जाना पड़ेगा बॉस। केके की आवाज, वंडरफुल ट्रैक। मंडे की सुबह आपने सुन लिया, आप हो गए रिचार्ज, आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा। ढेर सारे लोग खुशी के लिए मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अभी आनंद ही स्टूडियो में है, खुशी आ गई है। आप उसके साथ अगला कंपनी एंजॉय करेंगे, अगला शो आई मीन एंजॉय करेंगे यार। फिलहाल मैंने आपसे पूछा था एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, रणवीर कपूर का बर्थडे होता है आज 28 सितंबर को। मैंने कहा था बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
0: यही मैंने आपसे पूछा था, ढेर सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है यार, बहुत ही रॉकिंग पर्सनालिटी हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोग पकड़ लेते हो यार। एंड आज की सुबह इतना सिंपल क्वेश्चन था जो लोग नहीं पहचान पाए, ओहो बड़ा दुख है मुझे इस बात का यार। इतना अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन था वानी एंड बनी एंड साथ में नैना, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर कपूर पर ये पिक्चराइजेशन डायलॉग। बहुत ही अच्छी फिल्म है यार, गाने इतने अच्छे इस मूवी के। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, थैंक यू सो मच। किसी दो लकी विनर को जो हूँ मैं यहाँ पर एक अमेजिंग वाउचर देने वाला हूँ आपके नाम के साथ। अभी बताता हूँ कौन कौन है राइट वाले लकी विनर जिन्होंने जीता है आज एक्साइटिंग वाउचर। सबसे पहले सही जवाब देकर, आप में से कोई दो लोग हैं मेरी जान, आप लोगों में से ही पार्टिसिपेट किया है, तालियां सबसे पहले। चलिए अभी नाम बता देता हूँ फटाफट से जिन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, थैंक यू सो मच भाई, तालियां हो गई यार, तालियां हो गई। तो सबसे पहले नाम देखिए मेरे पास पहुंचा है, हाय हाय, चलो बता देता हूं। तो कंग्रेचुलेशन, अभी फिलहाल नाम इनका मैं अनाउंस कर देता हूं, बड़ी एक्टिव एंड वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर एक्टर, एक्टिव लिस्नर है हमारी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। इनका नाम है अलका वर्मा, कंग्रेचुलेशन अलका जी, ताली बजाओ इनके लिए भाई, गाना भी गाना पड़ेगा। चलिए अलका जी आपको हम एक दे रहे हैं फैंटास्टिक वाउचर, ये कहाँ का वाउचर है इसके लिए आपको डेफिनेटली कॉल आएगी हमारी टीम से और आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक और विनर अभी मुझे निकालना है, सो मैं फटाफट से देखता हूँ दूसरे लकी विनर कौन है। हाँ जी, तो इनका नाम है अजीत कसाना फ्रॉम लदावली कांठरोड। सर आपको भी बधाई है, आपको भी हम एक वाउचर दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशन, आप भी अपना वाउचर जल्दी रिसीव करने पहुंचेगा हमारे स्टेशन, आपके लिए भी जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आज की सुबह। तो आपके लिए

भी घंटी बजा देता हूँ यार, आप भी जीत चुके हैं एक वाउचर। चलिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बाकी जो अभी नहीं जीत पाए वो खुशी के शो में जरूर जीते हैं। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कल होगी मेरी आपकी मुलाकात सेम टाइम सेम जगह इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टिल देन टुमारो मॉर्निंग। जाने से पहले कुछ मैसेज पहुंचे थे, फटाफट पढ़ लेता हूँ। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं विकी सागर भाई। गुड मॉर्निंग विकी। अमित जी मेरे साथ जुड़े थे हरथला कॉलोनी से, ये हमारे साथ जुड़े थे। हाय गुड मॉर्निंग भाई, आज मौसम बहुत मस्त है। गुड मॉर्निंग आनंद। थैंक यू जी, हमारे साथ जुड़े थे सहारनपुर से एक भाई, इनका नाम नहीं समझ आया आज। एक मैसेज पहुंचा है सुभाष जी का मेरे पास मुजफ्फरनगर से। गुड मॉर्निंग आनंद जी, चमनलाल साहब जुड़े थे। हेलो हाय, हमारे साथ जुड़ी थी बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी। हाय गुड मॉर्निंग। एक हेलो मेरे पास पहुंचा था आज की सुबह, आपको भी हेलो। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े। मोहम्मद कामिल साहब रामपुर से जुड़े। ये हमारे साथ अविनाश सतनागर जुड़े। कश्मीर से मेराजुद्दीन साहब जुड़े। मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारी कली जी हमारे साथ जुड़े। साथ में मेराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, इनको शो अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लिखते हैं खुदा के, ये कह रहे हैं कि भैया खुद के लिए अच्छा सोचो, बुरा सोचने के लिए बहुत लोग हैं। एब्सोल्युटली सही बात है। चलो यार जल्दबाजी में मैं अभी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है बहुत स्पीड में है, मेरे को जाना पड़ेगा। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन साहब। लिखते हैं आनंद पाजी वेरी गुड मॉर्निंग, बारिश का एकदम मस्त मौसम हो रहा है पाजी, और उसके बाद आपकी आवाज़ सुन ली तो ओहो मजा आ गया, चार चांद लगा दी आपकी आवाज़ ने। अरे वाह, थैंक यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। अफरोज फातिमा हमारे साथ जुड़ी थी सही जवाब के साथ। थैंक यू अफरोज जी। चलिए गाइस कल मिलते हैं, बाय बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
0: डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मंडे की सुबह है और 28 सितंबर की तारीख है। दिन भी बहुत ही खूबसूरत सा है। मंडे का दिन वीक का पहला डे और सब एनर्जेटिक है, मुझे पता है। बाहर का मौसम भी बड़ा ही सुहाना है। और दोस्तों, आज का जो थॉट है ना, मंडे थॉट जो आज की सुबह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, आप उसे रिलेट कर पाएंगे एंड बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, किताबों की परीक्षा तो सिर्फ कुछ दिनों की होती है ना, लेकिन जिंदगी की परीक्षा ना हर रोज होती है। और जिंदगी में पास होने के लिए ना हमेशा बड़े बड़े अंकों की नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत, पेशेंस और खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। तो इस मंडे मॉर्निंग ना याद रखिए एवरीवन कि मुश्किलें आपकी परीक्षा लेने आई हैं। आपको रुकना नहीं है, हिम्मत रखनी है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि आपकी कहानी का अगला पन्ना शायद आज से ही खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नया मंडे, नई शुरुआत और खुद पर थोड़ा नहीं, मैं तो कहूंगी कि पूरा विश्वास रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ एवरीवन। जब खुद पर भरोसा रखते हैं ना, तो आधी जीत तो हमारी वहीं पर निश्चिंत हो जाती है। और इसी थॉट के साथ करते हैं मंडे शो की शुरुआत। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी लेकर आई हूँ ढेर सारी खुशियाँ एंड ढेर सारा फन एक्टिविटीज हम करने वाले हैं आज अपने शो में। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी है एंड आज आपको कुछ, आपके लिए सरप्राइज भी है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए आप। और चलिए करते हैं शो की शुरुआत एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। एंड दोस्तों, बाहर का मौसम ना बड़ा ही ऑसम है, तो मैंने सोचा चलिए ये मौसम अपना जादू दिखा ही रहा है, तो हम भी ट्रैक सुनवा ही देते हैं अपने श्रोताओं को आज की सुबह। एंजॉय कीजिएगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। गुड मॉर्निंग।

Hey, hi everyone. Good morning. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ खुशी के साथ और मंडे की सुबह है. वक्त हुआ है 10:39 और दोस्तों ये मौसम की बारिश ही तो है जो इंसान को तुरंत नजला जुकाम होने के चांसेस होते हैं. तो दोस्तों ये मौसम की बारिश से ना जरा बच के रहिए क्योंकि जाती गर्मी है और आती सर्दी के इस मौसम में ना टेम्परेचर में लगातार बदलाव हो रहा है. ऐसे में ना सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. इसलिए बारिश में भीगने से बचिए. बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट जरूर अपने साथ रखें और अगर गलती से भीग जाएं तो गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक ना रहें. और हाँ, गर्म पानी पीते रहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और मौसम के हिसाब से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए. बारिश का मजा भी लीजिए लेकिन सेहत के साथ, कोई रिस्क नहीं, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के. मुझे पता है आप ये सब जिसे इंतजार कर रहे हैं. तो चलिए करते हैं शुरू यहाँ पर संदेशों की शुरुआत. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर किन का मैसेज आया है. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह. हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप. मैं तो ठीक हूँ. दरक्षा जी ने मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह. कैसे हैं आप. मैं तो अच्छी हूँ दक्षा जी, आप बताइएगा आप कैसे हैं. और साथ में रुकैया भी है एंड इन्होंने और किसी का नाम लिखा है, रुकैया फातिमा जी. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आज की सुबह आया है. हेलो, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस हाय लिखकर भेजा है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये हमें पहुँचाते हैं मैसेज धनोरी तीलीवाला से निसार सलमानी. नौशाद सलमानी जी, प्रिय आरजे जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आज की सुबह यहाँ पर आया है. गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी लाइन पर मुरादाबाद से. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आज की सुबह विकी सागर जी का मुरादाबाद से. गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. काफी समय के बाद आज आपने मैसेज किया है. और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं कराची पाकिस्तान से राशिद अली जी. नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर गुड मॉर्निंग जिला रामपुर की टांडा से मोहम्मद कामिल जी का. और साथ में इनकी दोस्त भी है लाइबा काजमी एंड इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी लिखी है तो उसको हम अभी लौट कर आएंगे तो जरूर आप तक पहुँचाएंगे. एंड एवरीवन, आप भी आज की सुबह मुझे मैसेज पहुँचाएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. मैसेज पहुँचाने में ना कोई भी कंजूसी मत करना, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं हमें आपका भी सब्री से इंतजार होता है एवरीवन, आपके संदेशों का. और आप ही कंजूसी करोगे तो कैसे काम चलेगा. हाँ चलो, आप मुस्कुराओ और ये प्यारा से गाना एंजॉय करो.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002430।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई अमेजिंग ट्रैक विशाल मिश्रा की आवाज में। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, और इसमें जो लास्ट में लिरिक्स थे, जरूरी हुआ एंड जरूरी ये भी एवरीवन, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आज 28 सितंबर है और आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि सही और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि अवेयर और एम्पावर्ड भी बनाती है। तो आज की छोटी सी बात, सही इन्फॉर्मेशन पाइए, सही इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और फेक न्यूज़ से हमेशा बचिए एवरीवन, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर पर्सन यूज़ करता है, चाहे वो बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ फेक न्यूज़ भी आ जाती हैं जो लोग बहुत स्पीड में शेयर कर देते हैं, तो आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट अगर किसी तक शेयर कर रहे हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो सही है या नहीं, एंड उसके बाद ही आप किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए हैं उनको भी जल्दी से शामिल करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश तो आ ही गए एवरीवन। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, आरजे जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह महराजुद्दीन जी कश्मीर से एंड खूबसूरत वादियों से हमारी साथ जुड़ते हैं, रेगुलर लिसनर हैं हमारे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्सफुल मैसेज भेजा है आज की सुबह, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षिका मैम, दिल से थैंक यू। एंड सच में आपका जो मैसेज है ना, वो मेरे हार्ट को एकदम टच करके गया है, थैंक यू। एंड आप बताइएगा कैसे हैं आप, आज लॉन्ग टाइम आपने मैसेज किया है, काफी लंबे समय के बाद, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी दी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी।

सारे ही गाने सुपरहिट हैं एंड एक से बढ़कर एक ट्रैक हैं, और जब भी लता जी के गाने हम सुनते हैं ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई लता जी का ट्रैक सुनना चाहते हैं आज, तो मुझे फटाफट से मैसेज कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आज हम एक और आपसे इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछेंगे और आपको ना हम एक सरप्राइज भी देने वाले हैं, एक प्राइज जिताएंगे आपको। और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना मेरे साथ, तो बस बने रहिए और हम एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आज की सुबह पूछेंगे आपसे। तो आप सब तैयार हैं ना? अरे वाह, क्या बात है, हमारे जो लिसनर है ना वो तो बस तैयार हैं, सोच रहे हैं कि मैम आप सवाल तो बताइए, हम जवाब देने के लिए रेडी हैं। जानते हैं हम बहुत एक्टिव हैं आप। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए और बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

गुड मॉर्निंग माय डियर लिस्टर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 11:09। दोस्तों, आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में बेहद खास है। आज हम याद कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता जी का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी खुद शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। पिता का निधन के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही मराठी फिल्म के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और आगे चलकर हिंदी सिनेमा में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे कई पीढ़ियां आज भी याद करती हैं।

फिल्म महल का आएगा आने वाला उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव बना। लता जी के और लता जी को भारत रत्न दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई बड़े सम्मान मिले, लेकिन उनकी जर्नी हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है। प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की आदत ही आपको लंबे सफर तक ले जाती है। तो आज उनकी जयंती पर हम उनकी आवाज को याद करें और सुनते हैं लता जी की एक बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा। एंड एवरीवन, आप भी कोई खूबसूरत सा गीत अगर आज सुनना चाहते हैं, कोई ट्रैक जो आपको बहुत पसंद है, तो आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं। आज की सुबह हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, उनको भी मैं शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय दी केम छू। अफरोज फातिमा जी का मैसेज आज की सुबह आया है, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये गाना सुनना चाहती हैं, हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है, ये एक लड़की का ख्याल रहता है। एंड साथ में इनकी फ्रेंड भी है लाइबा काजमी और नजमा जी हैं, रामपुर से शबनम जी हैं। और खुशी दी, आपके लिए फ्लावर्स हमने भेजे हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये आपने सन फ्लावर्स भेजा है, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में आपने जो दिल लगा के भेजा है ना, ओहो हो, मैं क्या ही बताऊं भाई, दिल खुशी से झूम रहा है। एंड अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज आज की सुबह हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, और कहते हैं आज लता जी को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर उनके लिए गाना हम सुनना चाहेंगे। मैम आवाज दो हमको, हम खो गए। चलिए ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। और एवरीवन, आप भी मुझे मैसेज पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 9837896896। एंड आप अपने संदेश पहुंचाएगा और एक सवाल इंटरेस्टिंग सा मैं अभी ही लौट कर आती हूँ तो पूछने वाली हूँ, ठीक है, आप तैयार रहिएगा।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस पल का आपको इंतजार था ना, वो घड़ी फाइनली आ गई है। और जिस क्वेश्चन का मुझे भी सबरी से इंतजार था कि मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उन्हें श्रोताओं से, फाइनली वो वक्त आ गया है। और आज की मॉर्निंग ना बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट जो आप तक पहुंचानी है। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:33। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा जीवन और ऐसा सफर जीने का मौका मिला। बहुत से लोग यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें ये अवसर मिला। इसलिए हमें सर झुकाकर हर दिन पूरी मेहनत करते रहना चाहिए। विराट कोहली जी का कहना है कि इतने लंबे समय तक खेलना और इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए वे खुद को ईश्वर का आभारी मानते हैं। उनका संदेश भी बिल्कुल साफ है कि सर झुकाकर मेहनत करते रहिए और जिंदगी में मिली हर चीज़ और हर अवसर के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दोस्तों, विराट कोहली जी की इस शानदार मेहनत की एक और मिसाल देखने को मिली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कोहली जी ने शानदार शतक जड़कर अपने वनडे करियर की 55वीं सेंचुरी पूरी की है। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली जी। तो जोरदार तालियां हो जाए आज की मॉर्निंग, क्योंकि विराट जी बन चुके हैं दुनिया के दूसरे एंड सबसे कह सकते हैं ना सुपर फास्ट। पंद्रह हजार रन पूरे कर लिए हैं एंड सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली जी। और एवरीवन, वो सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, बहुत देर से मैंने आपको इंतज़ार करा के रखा है ना, चलो अब वो फाइनली इंतज़ार कंप्लीट करते हैं। और जिस सवाल का आपको इंतज़ार था ना, चलिए सुनवा देते हैं। दोस्तों, मैं ना एक म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ अभी राइट नाउ, एंड आपको बताना है कि ये म्यूजिक कौन सी फिल्म का है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो मैं अभी म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आपको उस फिल्म का नाम मुझे बताना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आज की मॉर्निंग मैं आपसे पूछ रही हूँ, और जो देगा सबसे पहले सही जवाब वो बनेंगे आज के हमारे शो के लकी सुपरस्टार। उनको मिलेगा एक अमेजिंग प्राइज़।

हाँ जी पहचान लिया ना आपने, बस मैंने आज की सुबह यही पूछा है आपको इस फिल्म का नाम बताना है जो मैंने अभी म्यूजिक प्ले किया है, ये कौन सी फिल्म का म्यूजिक है। हाँ जी ये जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है ना, ये कौन सी गाने का म्यूजिक है और इस फिल्म का क्या नाम है। जल्दी से अपना सही जवाब अपने नाम के साथ पहुंचाइए, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहर हसन सिद्दीकी जी का, आज की मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह आसिफ जी एंड इटली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं एवरी डे की तरह। आज भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एंड लंबा चौड़ा मैसेज आज की सुबह भेजा है इन्होंने, थैंक यू सो मच सर इतना खूबसूरत सा मैसेज भेजने के लिए। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, नया हफ्ते की पहली सुबह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और अच्छी उम्मीद लेकर आए, मंडे से शुरू होने वाला ये हफ्ता आपके लिए हर दिन कुछ अच्छा लेकर आए, आपकी चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे और आप जो भी करें उसमें कामयाबी और सुकून मिले, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हाय खुशी दी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लेकिन नाम तो जनाब आपने लिखा ही नहीं है, मैं आपसे कितनी बारी बोलती हूँ आप नाम लिखा कीजिए, क्यों भूल जाते हो। हाँ ये तो गलत बात है ना, माना कि आपको आंसर देने की बहुत जल्दी होती है, आप चाहते हैं कि देखो हर कोई चाहता है जब सवाल का जवाब हमें पता होता है ना कि सबसे पहले हम आंसर पहुंचाएं और हम ही बने लगे विनर, राइट, हर किसी का होता है ऐसा। लेकिन अपना नाम तो लिखो तभी तो मैं जानूंगी ना। एंड चलो अभी सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, एक गाना है बहुत ही खूबसूरत सा और ये ना हर किसी की लाइफ पर ना एकदम फिट बैठता है एंड आप रिलेट कर पाएंगे इस ट्रैक से। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, है ना, जिंदगी ना हर कदम पर एक नई जंग होती है, हमें नहीं पता होता नेक्स्ट पल क्या होगा लेकिन जिंदगी ना पल पल इम्तिहान लेती है और जो इंसान उस इम्तिहान को पास कर पाता है वही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है, जो रुक जाता है वो जिंदगी को नहीं मतलब आगे जीता है लेकिन वो जिंदगी को उस तरीके से नहीं जी पाता है जैसे जीना चाहिए, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान मोटिवेट होता है लाइफ में आगे बढ़ता है पेशेंस के साथ तो वो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाता है। बाकी गाना बहुत ही प्यारा है लता जी की आवाज़ में और मैंने कहा चलो हम आज की सुबह सबको सुनवाते हैं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. देखिए, शहजादी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ शहजादी जरूर आ गई है. आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त खुशी. और यहाँ पर वक्त हुआ है 11:51. आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एंड मैंने एक म्यूजिक प्ले किया था. और मैंने आपसे जानना चाहा था एवरीवन कि आप मुझे बताइए जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ कौन से फिल्म का है एंड उस मूवी का नाम बताना है और कौन सी गाने का ये म्यूजिक है आपको बताना था. तो अगेन मैं यहाँ पर सुनवाती हूँ और आप एक बार फिर से सुनिएगा. और हमारे आज के लकी विनर भी बन चुके हैं. कौन, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए.

हमारे पास बहुत सारे सही जवाब आए हैं और आज की सुबह सबसे पहले किसने सही जवाब पहुंचाया है वही बनेंगे हमारे शो के लकी विनर।

तो आज की सुबह हमारे शो के लकी विनर बनती हैं, बता दें ऑनियर, चलिए बता देते हैं, इंतजार नहीं करवाते हैं, बिना किसी देरी के आज के हमारे शो की विनर बनती हैं अफरोज फातिमा जी। तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब आज।

तो अफरोज आप बनती हैं आज हमारे शो की लकी सुपरस्टार, आपको बहुत बहुत मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। एंड ये सरप्राइज जो आपके लिए है, एंड क्या है वो आपको हम सब कॉल पे इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड सही जवाब के साथ हमारे साथ और भी लिसनर जुड़े हैं, उनका भी जल्दी से हम नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। हाँ जी, मूवी का नाम यही है और यही ट्रैक का नाम है, टाइटल ट्रैक। हमने टाइटल ट्रैक का म्यूजिक प्ले किया था और ये मूवी सुपरहिट है एंड सभी ने इस फिल्म को देखा है और म्यूजिक से ही पहचान गए थे आप लोग। हाँ, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं आलोक जी का मुरादाबाद से, एंड ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। थैंक यू सो मच आलोक जी, आज की सुबह आपने भी पार्टिसिपेट किया इस शो में। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कोमल शर्मा जी का आया है और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच कोमल जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रामपुर से रूपाली जी का, एंड ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं, फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम, थैंक यू सो मच रूपाली जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, और साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं एंड आदित्य कसाना जी हैं, कार्ट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, और ये कहते हैं आरजे खुशी जी आज हम आनंद जी के शो में विनर बन चुके हैं और बहुत जल्द स्टूडियो में मुलाकात होगी आपसे, बिल्कुल सर मोस्ट वेलकम है, आप आइएगा। और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में इनके दोस्त हैं रईसुल्ला अंसारी जी, एंड गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए मुरादाबाद से, मुरादाबाद सील गुप्ता से ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं सलीम अंसारी जी, और ये आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, अपनी फैमिली के साथ ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, आज की सुबह आपने पार्टिसिपेट किया। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: क्या बात है दोस्तों, ये खूबसूरत सा गाना हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन एवरीवन उससे पहले मैं आपको टाटा बाय बाय तो कह दूं। देखिए अब जाने का वक्त हो गया है और जाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, समय जो है वो अनुमति नहीं दे रहा है। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है राइट नाउ 12:02 और दोस्तों मुरादाबाद शहर में मौसम सुहाना है, तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। और जो दोस्त इस वक्त अपनी गाड़ी लेकर सफ़र पर हैं उनसे बस एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, सड़क पर ध्यान रखिए, स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचिए, क्योंकि आपकी मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है आपका सही सलामत वहां पहुंचना। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। मैं आपकी दोस्त आरजी खुशी फिर मिलूंगी आपको नई बातों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा और बस यही कहूँगी कि मिलेंगे 3 बजे, सी यू सून। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और इंतज़ार कीजिएगा हमारा। जितना इंतज़ार आपको हमारा होता है ना, उतना ही इंतज़ार हमें भी आपका होता है। एंड अच्छा तो हम चलते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।

0: मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह, ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किन तरह के फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है, हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं,

0: हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
1: असल में जो भी हमारे उर्वरक है उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक है और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव है या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें
2: जी।
1: क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
2: जी बिल्कुल।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, समापन होता क्या
1: बिल्कुल
0: है?
1: जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो खरीफ का चल रहा है
0: जी।
1: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है। कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है, अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य यह है कि हमने सारे 4 महीने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है, उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया, तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा, उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो समापन का अवसर मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए। क्या क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, जो भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज, तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब 8वीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका 9th में एडमिशन होना है, गांव में स्कूल हमारा 8वीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी, या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना, ये जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये 8वां कर लिया है तो अब ये 8वां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
0: जी,
1: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी, फिर उसके बाद हम आगे आ रहे
0: हैं। जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें भी फर्क देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा। तो क्या उस हिसाब से मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
1: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
0: जी।
1: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है। अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए, उसके लिए आपको लेगर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए, या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए, तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया, मंडी में बेचना है तो उस समय पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको तिरपाल से ढक के ले जाना है,
0: कवर करके लेके जाना।
1: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहां कौन सी दुकान से आपका कॉन्टेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती है वो थोड़ी एडवांस में आ जाती है, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार होंगी तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेकर आ रहे उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर तो भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े ना लगे, इंसेक्ट न लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां है। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए मेहनत की उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
0: खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां है इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल है खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होती है?
1: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है, जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है। उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने की लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते होते हैं और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से।
0: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये चलते चलते किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनकी तैयारी में भी आपको।
1: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पे जून से लेकर या जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ कहते हैं और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी कहते हैं। हमें शुरुआत में ठंड उठनी शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पका की
0: रबी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है, तो उसका महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
1: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
0: रबी
1: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका व्यर्थ हो जाएगा, खाद है, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
0: हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें और उसी खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में कुछ फर्क हमको देखने को मिलता है?
1: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो खरीफ फसल आई है जो खरीफ फसल थी उसको उसमें से जो पोषण ले लिया है, रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
0: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
1: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
0: जी,
1: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाएं अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें, तब लगाएं, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग हैं उनको आप रोक सकते हैं।
0: जी
1: नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज नहीं है या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी आप प्राप्त करें। और ऐसा नहीं है किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया, नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती
0: जी
1: हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए। और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का बीज हो, या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप लेने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें, वो करें। दूसरा, जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए
0: जी
1: वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, पीएमकेएसके है, सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुनें। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
0: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते हैं?
1: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको 1 एकड़ में 20 किलो फॉस्फोरस डालना है
0: जी
1: नहीं, करीबन जो आपको जो मतलब पोटास इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटास मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डीएपी ले सकते हैं और उसमें पोटास मिला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे,
0: अच्छा
1: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटास भी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषण तत्व की समान मात्रा है। अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा, तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को, लेकिन अगर ये जो है एनपीके है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है, तो ये अच्छा परिणाम है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। फिर जो फसल लगाने जा रहे हैं वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है। अगर पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं, ये आपको करनी है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या था, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो सारा खत्म, तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपनाएं, खेतों में अदल बदल के आप जो जो प्रयास करें उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातों थी।
0: खरीफ फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम जो सलाह

0: लेते हैं, हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही
1: लाभ नहीं
0: लाभ
1: मिलता
0: नहीं
1: जी।
0: मिल पाता है। तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
1: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज देने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला,
0: जी
1: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आना पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊँ मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावना है या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं इस साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहां उसको ऊंचा कर सकते हैं, टीन शेड लगा के जिससे कि बारिश बारिश उसमें ना आए, वहां स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूने से पुताई करते हैं ना, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते
0: जी
1: हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
0: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सर, आपके साथ जुड़कर, आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसलिए करते हैं कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी
0: जी,
1: खेती बाड़ी में आए।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए.के. सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
1: आपका भी
0: लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
0: ये दिव्या को इजाजत।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं, और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
4: धन्यवाद आरजरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीवी का इलाज होता है लेकिन ने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वे जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
4: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालात सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई, उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए, गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
5: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
4: देखिए अर्जेरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
5: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
4: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं। कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
5: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
5: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
4: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
5: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
4: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। अर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है, और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
6: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
4: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
6: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
4: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना

0: निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना

0: मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो सोच बदलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो जाने अनजाने में हम सब में कहीं ना कहीं होती ही है। किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसके बारे में राय बना लेना। हम किसी को देखकर कह देते हैं कि इंसान कितना घमंडी है, ये बहुत लापरवाह है, इसे किसी की परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद उस इंसान की कहानी कुछ और ही हो? तो आज हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और मेरे साथ में यहाँ पर रीना जी हैं। हम दोनों लेकर आए हैं आपके लिए ये बेहतरीन कार्यक्रम, और आगे भी बात करते हैं रीना से भी। हाय रीना, कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
1: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आज का मौसम भाई, ये क्या था, कभी धूप कभी बारिश?
2: ये तो मुझे भी समझ नहीं आया एक मिनट के लिए कि धूप के साथ साथ बारिश, मतलब एक अलग ही, मतलब मौसम भी कंफ्यूज है भैया कि बारिश खुद ही कंफ्यूज है।
1: हाँ, तो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। आपको कैसा लगा ये टॉपिक?
2: नहीं, अच्छी बात है, हमें हर अलग अलग टॉपिक लेकर आना चाहिए अपने श्रोताओं के लिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, अपनी जिंदगी में भी बदलाव करे, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। चाहे आप छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, कोई भी काम करें, हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। मुस्कान के पीछे की एक कहानी है भैया, बहुत ही शानदार, जो हम आपको बताते हैं। और ये मतलब सही है कि मुस्कान के पीछे की आखिर का रीजन क्या होता है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि उसके जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो। हो सकता है वो अपनी परेशानियों के बावजूद मुस्कुरा रहा हो। इसीलिए किसी की स्माइल देकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए। हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर चलता है, और क्या पता उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो जो इंसान मुस्कुराता है ना, तो ये मत सोचिए कि वो भैया बल्ले बल्ले है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। क्या पता वो किसी को दिखाना नहीं चाहता हो, और दिखाना इसलिए नहीं चाहता हो, देखिए दुनिया के आगे दिखाकर तमाशा करवाना कोई नहीं चाहता है।
1: और आज के टाइम में ना रीना, बहुत कम लोग हैं जो इंसान एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, सपोर्ट करने की जगह उसकी मजाक बनाते हैं। तो ये चीजें इसीलिए शायद इंसान अपने दुख में भी फेक स्माइल रखता है। अभी हम बात करते हैं चुप रहने वाला इंसान। और बहुत लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। हम उन्हें सोचते हैं कितना एटीट्यूड वाला इंसान है ये, इतना शांत, बातें भी नहीं कर रहा है। लेकिन शायद वो नेचुरल क्वालिटी हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कम बोलना हमेशा घमंडी नहीं होता है, कभी कभी खामोशी भी एक कहानी कहती है एवरीवन। कभी किसी की लाइफ में होता है ना कि इंसान बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों नहीं बात कर रहा है। शायद हो सकता है उसके पीछे का भी कोई रीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी रीना होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत कुछ लाइफ में चलता है, तो हमारा मन करता है कि हम कुछ ना बोलें, बस शांत रहें।
2: हाँ ये तो है
1: ना। तो ऐसी सिचुएशन में ना किसी को जज मत कीजिए आप कि बहुत एटीट्यूड है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, शायद ये घमंडी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हर इंसान शांत हो तो वो एटीट्यूड में हो, वो घमंडी हो, नहीं, उसके पीछे का रीजन भी जानना जरूरी होता है। मतलब बिना कोई रीजन जाने आप किसी को जज मत कीजिए,
2: करना भी नहीं चाहिए,
1: करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली।
2: और साथ ही साथ कपड़ों की राय, कपड़ों से राय, दोस्तों किसी के कपड़े, मोबाइल, गाड़ी या लाइफ स्टाइल देखकर उसकी पूरी पर्सनालिटी तय कर लेना कितना सही है या नहीं है। किसी को चीजें उसकी पूरी पहचान नहीं होती, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके दिल से होती है। चाहे आपके पास लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो, और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप सच बताओ किसी काम के नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है। इसीलिए इंसान तो वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, तो दूसरे के बारे में थोड़ा सा सोचता हो, और दूसरों को परेशानी दुख देकर खुद का दुख समझता हो। तो रियल इंसान वो कहलाता है।
1: रीना ये तो आपने सही कहा कि देखो किसी से किसी को ना अच्छे, अगर किसी ने अच्छा सूट वूट पहना है, अच्छा यू नो ड्रेसिंग सेंस है उसका या अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उसको देखकर ना हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि लाइक ये इंसान बहुत अच्छा है, अरे यार क्या बात है वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की जा रही है देखना, शायद वो रिच फैमिली से होगी, या फिर बहुत सारे मन में थॉट आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो उसने अच्छा ड्रेस पहना है ब्यूटीफुल लग रहा है तो वो इंसान नेचर का भी अच्छा हो।
2: हाँ
1: क्योंकि बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है,
2: घमंडी टाइप का होता है।
1: लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बहुत सादगी में रहते हैं लेकिन वो सबके दिलों को जीत लेते हैं, है ना। अभी आप मुझे बता रहे थे कि एक आपको मैम मिली थी, वो बहुत सिंपल सिटी में थी और उनका नेचर, उन्होंने हेल्प की थी, याद है आपको जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो एक महिला बैठी थी वहां पर, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने उनको रात में मतलब बारिश हो रही थी तो उन्होंने तुरंत उनको छाता दिया, उनकी हेल्प की और उनको खाना भी दिया। तो सच्ची इंसानियत वही होती है रीना, रियलिटी वही है जो इंसान किसी के दुख में काम आए, किसी की पानी को समझे।
2: ये तो है।
1: मान लीजिए ऑफिस में कोई कलीग आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया और आपने तुरंत सोच लिया कि बहुत एटीट्यूड है, लेकिन क्या पता उस समय उसके घर में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए एक मोमेंट के बिहेवियर को पूरी पर्सनैलिटी मत समझिए। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आप मतलब आपने उसको कुछ काम वो कंप्लीट ना कर पाए, तो आप ये सोचें कभी कि यार ये इंसान कैसा है, मैंने इसको ये काम दिया उसने काम नहीं किया। हो सकता है कि उसकी कुछ चीजें पहले से स्ट्रेस में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है। हम बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर सामने वाला इंसान परेशान है और हम उसको चार बातें सुनाते हैं तो वहाँ पे इंसान को तकलीफ होती है। तो पहले इंसान को समझो सामने वाला कैसा है क्या है, उसके बाद ही रिएक्ट करो, बिना किसी को कुछ बोले जाने आप किसी को जज ना करें, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी हम बात करते हैं अभी स्कूल और कॉलेज की लाइफ की।
2: देखो स्कूल और कॉलेज की बात ये है कि हम जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं
1: हाँ,
2: तो हम एकदम ये उम्मीद लगाने लग जाते कि भैया ये तो मेरी अच्छी दोस्त बननी चाहिए
1: हाँ।
2: या फिर कोई तुमसे दूसरा कोई उम्मीद लगाता है कि ये मेरी अच्छी दोस्त बन जानी चाहिए। और जब हम अच्छे दोस्त नहीं बना पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं तो जज करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको वो नहीं समझेगा, आपको नहीं जानेगा अच्छे से, तो दोस्ती कैसे कर सकता है। क्या पता आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में हो ही ना, जब तक आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में नहीं आएगा तब तक आपको वो दोस्त नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नए दोस्त बनाते हैं या फिर कुछ भी हो, पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है ना कि कभी खत्म नहीं होती। लेकिन वही आप बिना सोचे समझे किसी को फोर्स करने लग जाओ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, ये वो, तो ये वाली दोस्ती ना काफी टाइम तक नहीं चलती है। वो लगता है कि यार मैं इसका दोस्त बनना चाहता नहीं हूँ, ये बिना मतलब में मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, वही फॉर्मेलिटी वाला फिर दोस्ती हो जाती है। तो इसीलिए दोस्ती वहां करे जहां आपको कंफर्ट जोन मिले, वो आपको समझे और आप उसका साथ दे सके, अदरवाइज

0: यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि यह निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित

0: कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
0: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
0: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2,000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2,000, 1,500, 1,200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफरतबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
1: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं, बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
0: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
1: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
0: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
1: दोस्तों, उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
0: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
2: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
2: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, ये आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि
0: उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है, और ये समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें। और
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सर श्रीकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:06 और श्रोताओं, आप सभी का अपना पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूँ मैं, हेलो फरमाइश। दोपहर का ये खूबसूरत सा वक्त, और जब बात हो गीत संगीत की तो अपने मन पसंद की, जब हम यहाँ पर गीत संगीत सुनते हैं ना जीवन, तो ये सफर ना बहुत खूबसूरत होता है एंड खूबसूरती से गुजरता है। तो मैं हाजिर हूँ हेलो फरमाइश लेकर, और इस दोपहर को और भी खूबसूरत बनाएंगे आपकी प्यारी बातों के साथ, खूबसूरत नगमों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शो की शुरुआत। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। 28 सितंबर की तारीख है आज और मंडे की दोपहर है, सोमवार का दिन। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार, राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे। कैसे हैं आप सर, और अपना शुभ नाम बताइएगा हमें। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप। हाँ जी, अच्छा ही रहना चाहिए और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। एंड बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, मतलब सोचा था कि सबसे पहले मेरा ही कॉल लगेगा।
1: हाँ, मैंने तो, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि सबसे पहले मेरी ही कॉल लगेगी।
0: अरे वाह, क्या बात है, ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता भी मिलती ही है। आज हमारे शो के आप फर्स्ट कॉलर बने हैं, बताइएगा सर क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: मैं लता जी की आवाज में आज आन मिलो सजना फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, तेरे कारण मेरे साजन।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है।
1: और मैं अपने परिवार के कुछ नाम दे सकता हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं नाम।
1: जैसा मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय आदर, आकांता, आकाश और खंडिया गेस्ट है अमरजीत राय।
0: ठीक है सर,
1: सुनने वाले सभी के लिए गाना।
0: हाँ जी बिल्कुल, आपके परिवार के साथ और सुनने वाले सभी साथियों के साथ सुनवाते हैं गीत आपको। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत एंड लौट कर आती हूँ मैं वापस। सत्य का आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 और ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और ये अभी खूबसूरत सा गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी में बोल रहे थे मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस अच्छे हैं मैम, आप तो बढ़िया हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। आप बताइएगा इस वक्त क्या कर रहे थे आप सब?
1: बस मैम थोड़ा सा फुर्सत में थे तो आज दो तीन हफ्तों के बाद ना कॉल लगा लिया आपको, वक्त मिला तो।
0: जी जी जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आज आपकी, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा बलमा।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल रहेंगे ये मौसम भी गया वो मौसम भी गया, ये स्टेप के गाने के बोल हैं।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गीत आपको, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद।
1: कुछ नाम थे मैम?
0: हाँ जी बताइएगा।
1: इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, कोशिश शाकिर अली।
0: ओके ठीक है, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया आपका सर।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। और मौसम देखिए चेंज होता रहता है, अभी कड़ाके की धूप निकल चुकी है तो कभी बादल भी हो जाते हैं, इस मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमें कॉल भी जरूर लगाइए, हमें इंतजार है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए दोस्तों, मौसम तो बदलता रहता है, कभी बारिश है तो कभी धूप है, कभी बादल है तो कभी बेमौसम बरसात है। लेकिन हाँ, मौसम चाहे जैसा भी हो, अपने चेहरे की मुस्कुराहट ना कभी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारी है और बहुत कीमती भी है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि स्माइल करते रहा कीजिए। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: आपको भी अपना नाम बताइएगा।
1: मैम, आपका जाना पहचाना श्रोता शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: हाँ जी शिवा, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी मधुर मधुर आवाज मेरे कानों तक पहुँच रही है एक हफ्ते बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। एंड बताइएगा शिवा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से, कैसा मौसम है आपके साइड, पहले तो ये बताइए।
1: मैम देखिए, मौसम तो ये है, धूप निकली हुई है अच्छी बढ़िया।
0: ओके,
1: मौसम साफ है मैम।
0: चलिए अच्छी बात है, क्लीन वेदर है आपकी साइड का। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: मैम मूवी का नाम है अजनबी, और उसमें एक गाना रहेगा कौन मैं हाँ तुम।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गाना शिवा, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए शिफा की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक। और एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9833-7896-896, 9833-7896-896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। अपना कोई भी फेवरेट गाना अगर आप सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के बस खुशी को कॉल लगा दीजिएगा एंड अपना गाना सुनते जाइए और इस सफर को सुहाना बनाइए। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: हाँ तुम, बस तुम।
1: ओफो,
0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो,
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए, खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है और आप भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं दिए हम देने वाले हैं। आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपने प्यारे से मोबाइल को जो आप हाथ में रखे हुए हो ना, हाँ, इसी नंबर पर इसी फोन पर जिसको भी आपने हाथ में रखा हुआ है उसी पर हमारा ऑफिशियल नंबर डायल करना है और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप?
1: गुड आफ्टरनून दी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? जी बताइए रुकैया, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, आप बताइए आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सभी कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अभी तो मौसम भी अच्छा हो गया है, थोड़ा खुल गया है, बट कल परसों से तो लगातार बारिशें हो रही थी।
1: हाँ जी, बारिश हो रही थी हमारे यहाँ भी।
0: हाँ जी, हाँ वही ना, अभी बहुत सारे काम जो रुके हुए थे वो फाइनली कंप्लीट होंगे अब। जी आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है फिर मुरादाबाद हेलो फरमाइश शो में, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, पर एक पल यूं ही थम सा गया।
0: ओ, मुझे लगा आप ऐसा गला कर रहे थे ना तो मुझे लगा आप शायद गाने वाले हो अच्छा ओके, और बताइएगा आपकी सिस्टर कैसे हैं, फैमिली में सब लोग?
1: सब बहुत अच्छे
0: हैं। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, ये तो दोपहर का टाइम होता है, इस टाइम में मोस्टली लोग फ्री होते हैं ना, सब आराम से बैठकर शो को एंजॉय करते हैं, है ना?
1: हाँ जी, अच्छा करते हैं आपके
0: शो को
1: और आपका वेट करते हैं 3 बजे से पहले।
0: ओ अच्छा, देखिए आप इंतजार करते हैं तभी तो हम भी नहीं रुक पाते हैं ना, हमारा भी मतलब एकदम से ना दिल करता है कि चलो जल्दी से कनेक्ट करते हैं अपने लिसनर से। हम किसी भी काम में बिजी हों लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें भी स्पीड में ना मतलब स्पीड हाई हो जाती है हाँ जी, तो ये गाना आप किन के लिए सुना? हाँ जी, राइट। अच्छा ये बताओ, ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हो? अच्छा जी, एक तीर से दो निशाने। हेलो, हाय, कैसे हो दरक्षा? मैं तो ठीक हूँ।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज क्या बात है, अपने फ्रेंड के साथ आप भी कनेक्ट हो गए हो?
1: हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, ये पहले से डिसाइड किया था आप लोगों ने कि दोनों मिलकर बात करेंगे?
1: नहीं,
0: या रैंडमली आपने सोचा?
1: ये सारा।
0: तो कैसा लग रहा है, आपकी सिस्टर ने मतलब आपकी फ्रेंड ने आपको सरप्राइज दिया है?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी दोस्त ने मुझे सरप्राइज किया
0: है। ओहो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सो के उठे हैं।
1: नहीं मैम, मैं सो के नहीं उठी हूँ, मेरा ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होने वाली है।
0: ओह अच्छा, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट? अपना अच्छे से ख्याल रखो डियर, और सुनवाते ही गाना एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक श्रेया घोषाल जी की आवाज में, और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हो ना तो मुझे जल्दी से कॉल लगाइएगा।

0: दोस्तों अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक श्रेय घोषाल जी की आवाज में, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी मत हमें कॉल लगाने में। जब आप कंटिन्यू कॉल लगाएंगे तभी आपका कॉल हम तक लग पाएगा, क्योंकि एवरीवन ऐसा भी होता है कई बार बहुत सारे लिस्टर हमें कॉल लगाते हैं और सेम टाइम तो नहीं लग पाता है, बिजी भी बहुत आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कंटिन्यू जब आप ट्राई करेंगे ना तो शायद आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए, है ना। तो आप कोशिश करते रहिए और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: गुलफिजा।
0: गुलफिजा, अरे वाह, नाम तो बहुत ही खूबसूरत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: और सुनाइए मैम।
0: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए गुलफिजा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: से।
0: ये किधर है?
1: ये कानपुर के पास में।
0: अच्छा, मुरादाबाद में ही है।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, मुरादाबाद के नियर बाय। ओके, बताएगा आप क्या करते हैं गुलफिजा?
1: हम कढ़ाई करते हैं।
0: अच्छा, कढ़ाई करते हैं या पढ़ाई करते हैं?
1: कढ़ाई।
0: कढ़ाई।
1: हाँ सूट करते।
0: अच्छा, डिजाइन बनाते हैं आप ड्रेस पर, राइट?
1: हाँ।
0: ओके, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है।
1: और
0: हमारे हमारे लिए भी आप कुछ कार्ड देंगे, हमारा सूट वगैरह?
1: कार्ड देंगे जी मैम, आ जाइए आप।
0: अरे थैंक यू सो मच। हाँ डेफिनेटली आएंगे। बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: गाना सुनना।
0: हाँ, कौन सा गाना सुनना है और आप इतना नर्वस क्यों हो रही हो?
1: ये बच्चे का डर गायब है और पास।
0: अच्छा, ओ बच्चे बहुत नटखट होते हैं, वो बात ही नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, उनको एंजॉय करने दीजिए। आप बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: माहिरू
0: माहिरे, माहिरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल। हाँ
1: जी मैं।
0: ओके, हमने आपकी चाहत कबूल कर ली है मोहतरमा, तभी तो आपसे बातचीत हो रही है। चलिए एंजॉय कीजिए ये गाना और यूं ही स्माइल करती रहिए आप। हाँ तो मैम, बात करते हुए थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, बट कोई बात नहीं, होता है फर्स्ट टाइम जब हम किसी से बात करते हैं तो, कॉमन सी बात है। एंड एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा जल्दी से, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस नंबर पे कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। फिलहाल अभी ये गाना सुनो ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही शानदार गाने सुनते रहिए, अपने सफर को खूबसूरत बनाते रहिए। अभी मैं टाइम आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है 3:42 स्टूडियो की घड़ी में। तो आप भी टुक टुक घड़ी की तरफ नजरें मत मिलाइए, हमें फोन लगाइए, ठीक है? तभी तो हमसे बातचीत हो पाएगी ना आपकी। और ये गाना सुनो।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं सर। आप बताइएगा आपका शुभ नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: मेरा नाम प्रमोद नाम है, एक तक उन्होंने से बोल दिया
0: जी। बताइएगा सर कैसे हैं आप।
1: आपकी मेहरबानी, ऊपर वाली की कृपा है।
0: हाँ जी बिल्कुल, जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है जी। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज।
1: नाम है प्रेम रोग।
0: ओके।
1: और गाने के बोल हैं चलाया।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, सुनवा देते हैं आपको आपके पसंद का ये गाना। एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से, और लौट कर आते हैं हम कुछ खूबसूरत गानों के बाद। एंड आप भी मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन, नेक्स्ट कॉलर आप भी हमारे शो की हो सकते हैं। तो बस उसके लिए आप कीप ट्राइंग एवरीवन। जब आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे तो ही तो आपका कॉल लग पाएगा ना इजिली। आप चाहते हैं ना आपका कॉल लग जाए, तो हाँ बस नंबर लग

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से खूबसूरत सा गीत शीरज वाडकर, साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज, और आज उनकी जयंती भी है लता मंगेशकर जी की, और खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया। इस खूबसूरत गीत को लिखा था नरेंद्र शर्मा जी ने और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना।
1: मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से शकावत हुसैन मंसूरी बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैम, आप लोग सुनाइए, सब स्टूडियो में बढ़िया है।
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: जी मौसम इस टाइम तो धूप है वैसे, मगर 2 दिन हो गए कम से कम बारिश पड़ते हुए।
0: लेकिन अब तो राहत है।
1: जी हाँ थोड़ी राहत है, मगर फसल को कुछ ज्यादा नुकसान हो गया।
0: हाँ जी सर, धान की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि मोस्टली फसलें रेडी ही थी, बस थोड़े दिन और बाद।
1: जी हाँ
0: अब ये सब प्रकृति का है, अपने इंसान के हाथ में तो नहीं है सर।
1: जी हाँ मैम वो तो है ही।
0: जी आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम आज फिल्म का नाम है राम अवतार, गाने के बोले उंगली उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, और कुछ दोस्त है मैम,
0: हाँ जी बताइएगा।
1: छोटा भाई तालिब मंसूरी, तौफीक मंसूरी, शकूर भाई मंसूरी, और विकास श्रीवास्तव और सुनील रस्तोगी, और सहनूर अंसारी जी है बरेली से।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: ठीक है मैम, धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम एवरीवन। ये जो गाना है बड़ा ही खूबसूरत सा है ना, और इस गाने में ना एक सिटी का नाम है, एंड उस सिटी का ना स्वीट बहुत मशहूर है, तो आपको ना उस स्वीट का नाम मुझे बताना है। आज की दोपहर में आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ सर की फरमाइश पर है ना, तो उसमें ना एक सिटी का नाम आ रहा है और उस सिटी का ना एक स्वीट बहुत ही मशहूर है, तो आप मुझे बताइए उस स्वीट का क्या नाम है, एंड अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे इंतजार है। नंबर हमारा है 9837896896, और अभी इंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो अभी आपने ये ट्रैक एंजॉय किया है उसमें एक बड़े ही खूबसूरत सिटी का नाम लिया गया है। और उस सिटी का ना एक वैसे तो काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, लेकिन स्वीट भी बहुत फेमस है वहाँ का। और स्वीट में मैंने आपसे जानना चाहा था कि उस सिटी का स्वीट का क्या नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली सभी लोग जानते हैं। अगर आपको पता है ना तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉल लगाना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस अभी तो बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कॉल लगा रहे हैं बैक टू बैक। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बताएंगे एवरीवन कि जिस अभी जो ट्रैक आपने सुना उसमें एक बड़ी खूबसूरत सिटी का नाम लिया गया है, और सिटी का ना स्वीट बहुत मशहूर है, और आपको स्वीट का नाम बताना है। बस इतना सिंपल सा काम करना है, ठीक है? आप पहुंचाइए, अपने मैसेज एंड कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9837896896। और मैं आपके साथ आपकी खुशी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं विकास श्रीवास्तव, ग्राम नचोड़ा, जिला रामपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी मैम, हम सब बढ़िया हैं, आप बताओ आपके रिकॉर्ड में कैसे हैं?
0: हाँ जी, सभी बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या करते हैं सर?
1: जी मैम, मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं
1: जी।
0: ओके, तो इस वक्त भी आप सिलाई कर रहे हैं?
1: जी मैम, इस टाइम आपका प्रोग्राम ही सुन रहे थे।
0: अच्छा, शो के साथ साथ सिलाई भी कर रहे हैं या ओनली बस फ्री होकर बैठे हैं?
1: जी जी, ऐसे ही आपका प्रोग्राम सुन रहे थे मैम।
0: अच्छा अच्छा, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी मैम, आज फिल्म का नाम है जन्म जन्म, और गाने जो बोले खिलखिलाया है तेरा प्यार चले आया।
0: अच्छा, और ये गाना आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, सारे दोस्त हैं।
0: हाँ जी
1: जी मैम, दोस्तों के नाम है छोटा भाई श्रीवास्तव, शकावत मंसूरी, तौफीक मंसूरी, शकूर भाई मंसूरी और शाहनूर अंसारी, बरेली।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ अगेन, 9837896896, ये वही नंबर है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं और अपना गाना भी सुन सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा ट्रैक।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो कुछ अभी एक दो गाने से पहले एक ट्रैक प्ले हुआ था, एंड उस गाने में ना एक सिटी का नाम लिया गया था, और उस सिटी का ना स्वीट बहुत मशहूर है, एंड उस स्वीट का नाम मैंने आपसे मालूम किया था। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जवाब दिया है यहाँ पर मोहम्मद कामिल जी ने, और ये कहते हैं मैम नगीना के रसगुल्ले बहुत ही मशहूर हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से, मैसेज पहुँचाते हैं वसीम अकरम जी, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शबाब अली जी का, एडवोकेट है ये एंड मुरादाबाद से, और ये भी कहते हैं मैम वहाँ की रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा यू नो फेमस हैं नगीना सिटी के। एग्जैक्टली राइट आंसर आपने दिया है, थैंक यू सो मच। लगता है कि आपने स्वीट खाया है, हाँ थैंक यू सो मच। वैसे ये आंसर देखा ना आपने, मीठे की याद दिला दी है, और मन कर रहा है हमारा भी कि कोई कुछ मीठा हो जाए। क्यों रीना, क्या विचार है आपका?
1: नहीं,
0: ओ ये मीठे को अवॉइड करती है क्योंकि इसको मीठा पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है। चलो तुम मत खाना लेकिन खिला तो सकती हो यार, क्यों, क्या इरादा है? जलेबी? अरे यार मेरे को गुलाब जामुन खाना था, आप जलेबी की बात कर रहे हो?
1: क्योंकि जलेबी मैं भी खा सकती हूँ।
0: ओ ये कहना चाहती है कि मैं जलेबी की तरह बहुत सीधी हूँ चलो ये तो हमारी जोक्स पर मजाक कर रहे हैं, और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं। आज सोमवार का दिन है तो दीदी मैं सोमवार आपके कार्यक्रम में जुड़ता हूँ, आके सुनता तो डेली हूँ दीदी।
0: थैंक यू, आप मंडे टू मंडे हमारी शो में जुड़ते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वीकली आप कॉल लगाते हैं। सर बताइएगा आज कैसा मौसम है आपके शहर का?
2: मौसम तो दीदी बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, बरसात हमारे इधर तो नहीं हो रही दीदी, बंद हो गई बरसात हमारे इधर, 8 दिन होने वाले हैं दीदी।
0: चलिए 1 वीक हुआ है आपके यहाँ बारिश नहीं हुई, अच्छी बात है। बताइएगा आप आज क्या सुनना चाहते हैं सर?
2: दीदी आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है तो उनका गाया हुआ गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है फर्स्ट लव लेटर, और गाने के बोले दीवानी दीवाना तेरा हो गया, ये वाला गीत सुनना है दीदी। और आपको और हमारे साथ कुछ 2-3 मित्र है दीदी, उनका नाम ले सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल बताइएगा।
2: अविनाश तेली जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, और महाराष्ट्र से ये दोनों तो नहीं, और राकेश जी हैं।
0: ठीक है सर, आपकी फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, और आपकी फैमिली के साथ भी एंड तमाम सुनने वाले श्रोताओं के साथ एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका भी। एंड चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खूबसूरत गानों का सिलसिला तो जारी है और आप भी अगर सुनना चाहते हैं कोई अपना फेवरेट सा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपसे ज़्यादा अटैचमेंट है, आपकी उनसे अच्छा रिश्ता है, चाहे वो देखिए आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं एंड फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी गाना अगर आप सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9883789896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, आज नमस्कार
0: जी। नमस्कार, मैं खुशी बात कर रही हूँ, रीना जी भी है स्टूडियो में ही।
1: जी,
0: खुशी से बोल
1: रही हैं आप।
0: हाँ जी, बताइएगा आपसे क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज चॉइस है आपकी पसंद हमारी पसंद।
0: ओह वाओ, आपकी पसंद हमारी पसंद, अमेजिंग। तो ठीक है, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा। ठीक है सर,
1: साथ में मेरी पत्नी माया देवी है और दोनों बेटे ऋतिक और आदित्य का गाना।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपके परिवार के साथ सुनवाते हैं ये गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। तो एवरीवन, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक मैंने यहाँ पर चुना है फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा से, लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका। कैसे हैं आप? एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं आप एवरीवन, अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश। और मेरे साथ भी हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, उनसे पहले मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। वक्त हुआ है अभी 4:39 एंड हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: यकीन ना आए तो आज माकर देख लेना, यकीन ना आए तो आज माकर देख लेना, और इस दिल के टुकड़े हजार करवा कर देख लेना। हर टुकड़े से आएगी आप ही के प्यार की खुशबू, चाहे कोई सा भी टुकड़ा उठाकर देख लेना।
0: जी नाम भी बताइएगा अपना, इतनी प्यारी शायरी आपने सुनाई है।
1: मैडम मैं ग्राम मैचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से तौफीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैडम बढ़िया है, आप बताएं।
0: हम भी ठीक है, आप बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैडम फिल्म का नाम है गोपी किशन।
0: हाँ जी।
1: और उसमें गाना है ना भूख लगे ना प्यास लगे, गाने से पहले मैं कहना चाहूंगा।
0: जी कहिएगा।
1: कि चले भी आओ तुम्हें से हम प्यार करते हैं, चले भी आओ तुम्हें से हम प्यार करते हैं, और ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, और जलाकर आपकी राह में मोहब्बतों के चराग आपके आने का इंतजार करते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं आपकी, और ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है सर?
1: जी मैडम।
0: जी आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए विवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और लौट कर हम आते हैं प्यारे सी गाने की उस पार। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और इंजॉय कीजिए गाना।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जारी है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल लगा सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। आप भी हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और अभी वक्त हुआ है 4:50। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका सर?
1: मोहम्मद हारून गुल्याम, ग्राम अकबरपुर, तहसील शिरोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं सर। बताइएगा, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है जुआरी, कुमार सानू की आवाज में। आप भी चला देना।
0: अच्छा ठीक है सर, आप सुनिएगा कुमार सानू जी और साथ में अलका याग्निक जी की आवाज में एक प्यारा सा गाना।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी टू अनाड़ी से, एंड बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और इस गाने को आप एंजॉय कीजिएगा। मैं बस वापस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: देखिए एवरीवन, हम तो पास आ गए हैं अपने रेडियो के स्टूडियो के खूबसूरत से, जो हमारा माइक है ना, जिस पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये हम इसको टुक टुक निहार रहे हैं और रीना जी हमें निहार रही हैं कि खुशी जी आप इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेती हूँ। मैंने कहा आपको पता नहीं है, तो बोलती है नहीं पता है। तो मैंने कहा अरे ये आपकी गर्मा गर्म जो आपने बनाकर हमें चाय पिलाई है ना, उसी का राज है। एंड लड़की ने आज मेरे को चाय पिलाई और सच में बहुत टेस्टी चाय थी, यमी, मजा आ गया एकदम। शाम ना हमारी खूबसूरत हो गई है। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका सर? सलीम अंसारी जी, कैसे हैं आप? हम भी ठीक हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप फरमाइएगा, आपके परिवार में सब खैरियत से हैं सर?
1: हाँ, हमारे परिवार में बहुत बढ़िया। जी
0: जी,
1: याद करती हैं आपको?
0: इनाया, सनाया, सब लोग हमें याद करते हैं, हम भी सभी को याद करते हैं सर। बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: अंगार बन गया।
0: अच्छा, ओके, सुनवाते हैं ये खूबसूरत से गाना आपको सर।
1: हमारी बेटी है इनाया सनाया चमन।
0: हाँ जी।
1: और हमारा दोस्त है काशिमल।
0: अच्छा ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गाना और आपके परिवार के साथ एंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। लेकिन हाँ, नेक्स्ट शो लेकर आने वाली हैं रीना जी इवनिंग मस्ती, जहाँ पर आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है और कुछ गेम्स भी आप खेलने वाले हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। क्या है वो, तो सरप्राइज है आपके लिए। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन, मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, बाकी सेफली ड्राइविंग कीजिए।

भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि

0: है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज। रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। अगले 2 घंटे के लिए हम आप सभी से करेंगे ढेर सारी बातें। और आज की तारीख यानी कि सोमवार, और देखिए जब सोमवार की शुरुआत होती है ना, प्यारी वाली शुरुआत होती है आपकी, तो संडे तक आपका जो दिन होता है ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक वाला एंजॉय होता है। और इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हो गए हैं। और समय की बात करूँ तो 5:11 हो चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर जानेंगे देश दुनिया के बारे में। और साथ ही साथ अगर मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूँ आज, तो हल्की सी धूप ने दस्तक दे ही दी है फाइनली, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। प्रिटी सन आज का जो सन था वो प्रिटी वाला था। सो आपने आई होप कि एंजॉय भी करा होगा। बहुत से परेशान हो गए 2 दिन के अंदर ही ना, कि भाई कपड़े इतने सारे ढेर लग गए ना धोने के लिए, अब कैसे क्या किया जाए, सीलन आ गई है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो कल आराम से आप धूप में सुखाइए ये कपड़े, क्योंकि कल से फिर से वही टांडव वाले धूप निकलने वाले हैं। ये 2 दिन का मौसम था जो कि कंटिन्यू बारिश होए जा रही थी, और आसपास के इलाके में भैया पानी भर चुके हैं, बस क्या ही कह सकते हैं। लेकिन खैर, अब आज की तारीख भी यानी कि 28 सितंबर है, बस 3 दिन और है, उसके बाद तो ये महीना सितंबर का भी ख़त्म होने वाला है, सीधा अक्टूबर। और अक्टूबर के जो महीने की जब शुरुआत होती है, पहली तारीख की शुरुआत होती है, तो हर चीज़ इतनी महंगी होती है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, और महंगी हो चाहे सस्ती हो खरीदेंगे तो हर कोई। तो फिलहाल आज के टॉपिक पर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आप सभी को गाना सुनवाती हूँ। और ये गाना आई होप कि आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि पहले इस गाने को बहुत सुनते थे, आज फाइनली आप इस गाने को सुनिए और इंजॉय करिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: आपका दिल ना लगे तो हमारा रेडियो कनेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके शहर में यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप सभी को वो एंटरटेनमेंट करता रहता है, जिसका नाम है
1: हरी गली आ जा।
0: तो मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। इस गली में अगर आप कनेक्ट हो गए तो एक बार कनेक्ट होने के बाद दोबारा आपको चैनल चेंज करने का मन ही नहीं करेगा, इसीलिए दिल ना लगे तो हमारी गली जरूर आइएगा। इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड होता हो। समय की बात करूँ तो 5:24 हो चुके हैं और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि चाय की चुस्कियों के साथ जरा हम ट्रैफिक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो PSC की तरफ से और दिल्ली रोड की तरफ से आप आ रहे हो यानी कि गांगन की तरफ से, तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की बात करूँ भैया, तो क्या ही कह सकते, पुराने बस स्टैंड की तरफ से जब भी आप निकलोगे वो भी शाम के टाइम में, तो आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ट्रैफिक के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अपना ध्यान कैसे रखेंगे ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। अब अपना ध्यान ऐसे रखना होता है कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं, हेलमेट सीट बेल्ट लगाए बिना नहीं निकलना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी आपका सामान है उसको भी झोले में पैक कर लेना चाहिए, तभी बाहर निकलना चाहिए। घर से जो ऑर्डर आए उसको भी लेकर ज़रूर जाना है। और जो डे है बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तो अगर आप ट्रैफिक में हैं और आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भैया, तो आज बहुत जो शुरू से आने वाले उनका समय वेस्ट ना हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर 9837896896। इस गली से जाने वाले में थोड़ा सा

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है. आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है. और समय की बात करूं तो 5:31 हो चुके हैं. और अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो कल का मैच था भैया, बहुत ही धमाकेदार, जिसमें विराट कोहली का जो प्रदर्शन रहा बहुत ही शानदार वाला. अब ये शानदार वाला कैसे रहा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपने कल का जो मैच देखा होगा ना, ODI वाला, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक, जिसमें विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले में 15,000 रन पूरे कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह यानी कि वनडे इंटरनेशनल में यह उपलब्धि हासिल की और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही कोहली ने सबसे तेज 15,000 वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. तो भैया, इनको किंग कहा जाता है, किंग कोहली. और ये ऐसा धमाल ना मचाए ऐसा कैसा हो सकता है. जब ही मैदान में उतरते हैं तो करोड़ों देशवासियों का जो दिल है वो एकदम धड़कने लगता है और ताली गूंज के साथ इनका जो स्वागत करते हैं ना. अब बात वही आ गई ना कि जो अब हौसला बढ़ाएंगे इंसान का ना, तो आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा ना, वो आपको मिल जाता है. और इन्होंने कल वही कर दिखाया, यानी कि जो बोला वो कर दिखाते हैं, बाकी जो होएगा वो देखी जाएगी. ये कहना है तो. और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैच है कब कब होने वाले हैं, किस किस डेज होने वाले हैं, तो इसकी भी लिस्ट मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ध्यान रखें और जब जब ODI मैच शुरू हो, यानी कि जब जब आप देख सकते हैं. तो मैं बता दूं, यानी कि अब जो मैच होने वाला है, सेकंड मैच यानी कि 30 सितंबर को होने वाला है, और जो थर्ड मैच होगा 3 अक्टूबर को. सो आप ये मैच देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. और साथ ही साथ और भी हम डे, और इसके बाद यानी कि फर्स्ट T20 जो मैच होएगा ना, उसके बारे में भी हम बताएंगे आप सभी को. लेकिन फिलहाल ये ODI वाला मैच एंजॉय करिए. अब देखना ये भैया कि कौन सी टीम ज़्यादा मुकाबले पर है. फिलहाल तो हमारी इंडिया की भाई क्या ही कह सकते हैं, वैसे मस्ती रहने वाला है. और इसके बाद हम बात करेंगे आज, यानी कि कहते हैं ना, जिस उम्र में, जिस एज में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, उस एज में उनके अंदर एक अलग ही जुनून था कुछ कर दिखाने का. रग रग में वही कि भाई कुछ करना है. एज छोटी हो क्यों ना, लेकिन हौसले बड़े रखा उन्होंने. अब अगर आप हिंट से समझ गए होंगे तो आप मुझे बिना सोचे समझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं आखिरकार किन की बात करने वाली हूँ मैं. इसके बाद हमारा नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार मैं किन की बात करने वाली हूँ. और ये गाना तो आज उनके लिए बनता है.

0: हाय हाय हेलो जी, गर्ज वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके। इवनिंग मस्ती शो में आप आज रीना के साथ कनेक्ट है और अब हम बात कर लेते हैं उस आवाज की जो जिस आवाज ने हर किसी का दिल जीता है। आज जिक्र सिर्फ आवाज की नहीं, जिसे सुनकर लगता है जैसे संगीत खुद बोल रही हो आपसे, भारत की महान गायिका यानी कि लता मंगेशकर जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। आई नो कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में जन्मों जन्मांतर तक रहने वाली है, क्योंकि उनके गाने जब भी आप सुनो तो लगता नहीं है कि वो हमसे दूर है, लगता है कि वो हमारे पास ही। आज यानी कि 28 सितंबर और उनका जन्म यानी कि 1929 के को मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही संगीत का माहौल था उनके घर में, क्योंकि उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जाने माने शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे, इसीलिए सुरों से उनका रिश्ता कोई अचानक नहीं कह सकते हैं, बल्कि बचपन से ही उनके जीवन का हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि लता जी ने बहुत छोटी एज में ही अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा ली, और लेकिन जिंदगी ने उन्हें बचपन में ही जिम्मेदारियां भी दे दी। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और उन्होंने फिल्मों में अभिनय और गायन से अपने परिवार को संभाला, यानी कि वो सिंगिंग के साथ साथ अपने फैमिली वालों का भी ध्यान देती थी और उनके साथ बढ़कर कदम हाथ बढ़ाती थी। फिर वो आया वो दौर जब उनकी आवाज धीरे धीरे पूरे देश की पहचान बनी। शुरुआती संघर्ष से लेकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार आवाज बनने तक उनका सफर सच में बड़ा असाधारण था। आज लगता है कि हर चीज आसान हो गई होगी, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत बहुत कठिनाइयों से शुरू हुई है और आज लता जी की जयंती है, उन्हें याद करते हुए बस इतना ही कहेंगे, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पीढ़ियों तक महसूस की जाती हैं, और उनमें से एक है लता मंगेशकर जी। तो उन्हीं का एक गाना है बहुत ही शानदार वाला, आई होप कि आपका ये फेवरेट वाला गाना भी होगा, क्योंकि ये बहुत शानदार है। कहते ना जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन किसी का साथ आपको मिल जाए तो जिंदगी भले ही मुश्किल क्यों ना हो वो भी आपको आसान लगने लग जाती है। सो इस गाने को अगर आप सुनेंगे ना तो वाकई में आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, है मेरे साथ कोई ना कोई जो हमेशा साथ निभाता है। और फिर दिल से एक ही आवाज़ आती है, अगर तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद हम गाना सुनवाएंगे आपको।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

लता मंगेशकर जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 5:51 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है। और फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं उस छोटी एज में जब बच्चे सोचते हैं कि हम खिलौने चाहिए, खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। यानी कि बात उस नौजवान की जिसकी उम्र भले ही छोटी थी लेकिन सपने पूरे देश की आजादी से भी बड़े थे। यानी कि आज की तारीख हमारे लिए सिर्फ तारीख नहीं है, बहुत मायने रखती है ये तारीख और बेहद खास दिन है। आज 28 सितंबर 1907 को जन्मे शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था आज के दिन। देशभक्ति की माहौल में बीता बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सवाल और देश को आजाद देखने की चाहत पैदा हो गई थी। कहते हैं छोटी एज में ही जब पूरे बच्चे खिलौने से खेलते थे तब भगत सिंह के मन में देश के लिए कुछ अलग ही जुनून था, एक अलग ही जज्बा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में गहरा असर डाला। आगे चलकर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता चुना। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन में उन्होंने एसोसिएशन से जुड़े और अपने साथियों के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद रखी, आवाज उठाई। और फिर आया वो दौर यानी कि 1928 में उन्होंने बटुकेश्वर दंत के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था बल्कि अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उनके बाद गिरफ्तारी, मुकदमा और जेल, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। फिर यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। यानी कि महज एज की बात करूँ तो 23 साल, लेकिन देश के इतिहास में अपना अहम भूमिका और अहम नाम छोड़ के चले। आज उनकी जयंती है और उम्र छोटी हो सकती है लेकिन विचार और हौसले बड़े हो तो इतिहास में लिखा जा सकता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं एज मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि एज तो सिर्फ एक नंबर होता है और उस नंबर के मायने नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहत, आपकी बुलंदी होती है जो आपको बरकरार करती है, आपको आगे बढ़ाती है। फिलहाल कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करेंगे और उसके बाद अपने लोकल की बात करने वाले हैं। कल बात करूं तो कल से बच्चों की स्कूलें भी शुरू हो रही हैं क्योंकि दो दिन से उनकी छुट्टियां थी मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन कल कड़ाके की धूप निकलने वाली है अपने मुरादाबाद। सो हमारे पास संदेश आता है, जय श्री राम। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए कैसे हैं? और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से।

हमारे साथ आसिफ जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि क्या बात है रीना जी, आज तो आपके सॉन्ग का जो कलेक्शन है ना, एक से बढ़कर एक है। यानी कि बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग आज सुनने को मिल रहा है। इवनिंग मस्ती का मज़ा ही अलग है और आज का जो म्यूज़िक कलेक्शन है वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ेंगे हम और उसके बाद मैं फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाली हूँ और करेंगे क्या, ढेर सारी बातें। यानी कि 1 अक्टूबर से बताया जा रहा है भैया, हर चीज़ें या तो महंगी होंगी या सस्ती होंगी, आखिरकार उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए गाना आप सभी को।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
6: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाह

दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश के माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिलजीत दुसांध की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:09 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से ये बताया जा रहा भैया जो कि चीजें महंगी होने वाली है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो कि महंगी होने वाली हैं, जरा आपको यही कहेंगे कि कान खोलकर सुन लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ पाएंगे और थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी हर चीज आपको महंगी मिलने वाली है। यानी कि सीजन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 5% से बढ़ाकर यानी कि 3 पॉइंट बढ़ा दिया है, और 3 पॉइंट बढ़ाने का मतलब है कि 8% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तांबा, स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की बढ़ोतरी लगातार अपने प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इनकी चरम सीमा पर हर चीज आप देखने को मिलेंगे क्योंकि फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं और साथ ही साथ भैया दिवाली के बाद शादियां भी ऑफ कोर्स शुरू हो जाती हैं। तो अब फेस्टिवल के साथ तो एक बहाना है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गए और रेट बढ़ा देते हैं। हर साल यही होता है, जब भी फेस्टिवल शुरू होते हैं तो हर चीज़ का जो चरम सीमा है वो बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो पुराने स्टॉक है यानी कि जो अब चेंज कर दिए जाएंगे वो थोड़ा आपको सस्ते लेवल पर मिल सकते हैं, बाकी जो नए मॉडल है, नए माल है, वो बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है। सो बाकी सिलेंडर एलपीजी के साथ भी बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से हम कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। और ट्रेनें बढ़ाने की भी बताई जा रही है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, हर कोई अपना घर जाएगा और उस टाइम घर जाने के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि ट्रेन में भीड़ हो जाती है, इसलिए ट्रेनें भी बढ़ाई जा रही हैं। सो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और शानदार वाला हम गाना एंजॉय करते हैं और फिर आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल इसी के साथ साथ मेरे पास मैसेज आता है बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हेलो प्यारी वाली, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रम दान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

और मैं हूँ हो गई हूँ आप सभी के साथ कनेक्ट। गज वाली इवनिंग है जी, आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है। और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके हैं और अलका याग्निक जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और अब हम बात कर लेते हैं भैया मूवी की, जो कि द वन और हनुमान अंश मूवी का अब जो टक्कर है, मुकाबला है, जबरदस्त वाला चल रहा है, क्योंकि दोनों मूवी धार्मिक है और बहुत ही शानदार वाली है, बहुत ही फैंटास्टिक वाली है। और देखिए, जब तक मैं कोई मूवी देख कर आती नहीं हूँ, तब तक मैं किसी को बोलती नहीं कि भैया देख कर आओ, लेकिन द वन मूवी मैं देख कर आई हूँ। कल ही हम देख कर आए, संडे में भीगते भीगते गए, क्योंकि क्रेज़ इतना हो जाता है ना किसी मूवी को देखने के लिए, तो फिर बारिश आंधी तूफान कुछ नहीं देखा जाता है, फिर तो चल लेते हैं भैया, चलो देख कर आते हैं। तो हम कल देख कर आए हैं, तो आप भी डेफिनेटली मूवी देखिए, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा धार्मिक मूवी है, वन देवी के ऊपर है और माँ नाम भी वन, द वन मूवी करके है ये नाम। तो ये शो आप अटेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ हनुमान अंश और इस मूवी के बीच में बहुत ही ज़्यादा टक्कर हो चुका है। और अब साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, जो मूवी यानी कि दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, अब उसका डेट फिर से चेंज कर दिया गया है, यानी कि फेस्टिवल से पहले ही ये मूवी रिलीज होने वाली है। आखिरकार अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी रिलीज होने वाली है 5 नवंबर को, कहा जा रहा है कि थिएटर में मूवी रिलीज हो सकती है। और मूवी का नाम है रामायण, जिसका ट्रेलर आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत ही शानदार। बाकी मूवी देखने के बाद पता चलती है कि कितना ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। तो अब हर मूवी बढ़ चढ़कर और कुछ मूवी के जो डेटीज है वो चेंज भी हो गए हैं, ताकि क्योंकि धुरंधर मूवी अब सिनेमा घरों में रिलीज है ना, तो धुरंधर मूवी के चलते और जो मूवीज रिलीज होने वाली थी, श्रद्धा कपूर की मूवीज वो रिलीज होने वाली थी, जो कि अभी नहीं हो रही है, उसका डेट फिर से चेंज कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर दोबारा रिलीज होंगी कभी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये दो मूवी के अंदर टक्कर है, और रामायण मूवी भी 5 नवंबर को बताया जा रहा है कि सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बाकी आप जरूर बताइएगा मुझे कि आपको हनुमान अंश और द वन मूवी में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट लगी है, तो आप जरूर मैसेज, कितने नंबर आप देना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं आप सभी के लिए देखिए कड़क सवाल भी तो लेकर आने वाली हूँ ना, इसीलिए स्टे ट्यून रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए जी। और अपना मुकाबला कभी किसी के साथ मत करिए, क्योंकि भगवान हर किसी को अलग बनाता है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, इसीलिए कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करिए कि ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के हिस्से का ज़रूर मिलता है। बस मेहनत करते रहिए, आज न कल आप सफल ज़रूर होंगे। बस एक ही ज़िंदगी में याद रखिए, हार कभी नहीं मानें। अगर आप हार गए तो समझिए सच में ही हार गए, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही होएगा आप सभी के साथ में। चलिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए, www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। इवनिंग मस्ते शो में आप कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 6:33 हो चुके हैं और आप मुरादाबाद से हैं, साथ ही साथ लाइन पार के पास से हैं, तो आप प्रकाश नगर की तरफ से हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वाला खबर है। या फिर आप आसपास से भी हैं तभी आपके लिए वेल डन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं भैया कीर्तन में शामिल होए और कीर्तन में रंग बरसाए तो आज आप रात कनेक्ट हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद के लाइन पार स्थित हनुमान मंदिर में यानी कि आज रात खाटू श्याम बाबा जी का कीर्तन होने वाला है। तो आई होप कि आप सभी को पता चल ही गया होगा और आप सभी ने तैयारियां भी कर ली होगी कि भैया आज शाम खाटू श्याम जी का कीर्तन होने वाला है, तो हम सब जाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी का जो भजन है ना, सच बताओ बड़ा ही मग्न होता है और आप वहाँ जाते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी की अनुभूति होती है। तो आप भैया कौन कौन जाने वाला है जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ, नंबर है 9823786896, क्योंकि मुरादाबाद के लाइन पर स्थित हनुमान मंदिर के सामने यानी कि खाटू श्याम जी का आज कीर्तन होने वाला है। और साथ ही साथ मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए एक और अब कड़क सवाल भी लेकर आने वाली हूँ जी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करो, जाइए और कीर्तन का एंजॉय लीजिएगा आज रात शाम।

0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
1: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
0: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है और आप चाहते हैं भैया कि सात अजूबे पार्क हम जाए, एंजॉय करें, वो भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक हमारी तरफ से वाउचर कार्ड, जिसे आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये नहीं कि आपको अकेला जाना है, बल्कि आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं और वैलिड टाइम है उसका, यानी कि 1 तारीख यानी कि 31 तारीख तक आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आंसर सही देना पड़ेगा, तभी आपको हमारे रेडियो की टीम की तरफ से आपको कार्ड मिलेगी और उस कार्ड के जरिए आप वहां एंट्री कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो इसी बीच में लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए क्या कड़क सवाल। आखिरकार आज का भैया कड़क सवाल क्या होने वाला है, जरा हम आपको बताते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार अब नहीं करवाते हैं, क्योंकि इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रही हूँ। आपने बताना है भारत की पहली फिल्म का नाम बताना है आपने। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। नाम, पूरा नाम बताना है, अधूरा नाम अगर आपने बताया तो आप विनर नहीं बनेंगे, ये भी याद रखिएगा। पूरा नाम आपने बताना है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। जल्दी नाम बताइए हमें। फिलहाल विक्की सागर जी का मैसेज आ गया है, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। तो चलिए जल्दी जल्दी सोचिए, यानी कि भारत की पहली फिल्म का क्या नाम है और क्या आपने वाकई में मूवी देखी है। लेकिन आपने पूरा नाम बताया तो आप बनते हैं विनर। चलिए इसी के साथ एक और गाना सुनवाते हैं और फिलहाल आप भी सर्च करिए कि भारत की पहली फिल्म का क्या नाम है और राइट आंसर के साथ के लिए।

You're a tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है। और आपको मैं बता दूं, त्योहार के सीजन में यात्रियों के लिए भारी संख्या में, यानी कि क्योंकि जो यात्री है वो भारी संख्या में है और उसके लिए ट्रेनें भी स्पेशल, यानी कि हर जगह से अलग 8 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

और ये जो ट्रेन चलाई जा रही है यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ फिरोजपुर ऋषिकेश से लेकर बिहार तक के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा पर हर कोई अपने घर जाता है और उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। और ये जो ट्रेनें हैं दिल्ली चंडीगढ़ फिरोजपुर और ऋषिकेश के साथ बिहार पटना और मुजफ्फरपुर सीतागढ़ी से यानी कि पहुंचने वाली है। तो आप इस इलाके से ही आते हैं तो बिल्कुल दिल्ली से आप अपने आइनों की अपनी सीट भी यानी कि देखिए स्लीपर के लिए तो पहले ही भैया बुक करना पड़ता है, अगर आप तत्काल करना चाहते हैं तो वो भी करिए। और मुझे लगता है कि फेस्टिवल है जो फैमिली वालों के साथ आप इंजॉय करते हैं, फैमिली वालों के साथ आप फेस्टिवल मनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही फैंटास्टिक रहता है। तो आप सभी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो एक बार अपना चेक करिए, चेकआउट करिए और सीट बुक करिए और अपने घर के लिए रवाना हो जाइए, क्योंकि भैया फेस्टिवल तो घर वालों के साथ ही एंजॉय आता है। और बाद मैंने आज आप सभी से पूछा भी है कि यानी कि कड़क सवाल, अगर आप सात अजूबे पार घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, साथ ही साथ लाइन पार यानी कि हनुमान मंदिर के पास आज खाटू श्याम जी का कीर्तन भी हो रहा है तो आप वहाँ भी जाइए, भक्ति में होइए, भक्ति में गूंजिए, एंजॉय करिए। खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं और खाटू श्याम यानी कि कलयुग का भगवान कहे जाते हैं, तो आप उनके साथ जरूर कनेक्ट होइए कीर्तन में और एंजॉय करिए। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल, भारत की पहली फिल्म का नाम आपने बताना है, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। चाहते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम जानेंगे सिल्वर और गोल्ड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप आंसर पता करिए और मैसेज करिए कि आखिरकार भारत की पहली फिल्म कौन सी है, जल्दी सोचो और मैसेज करो। फिलहाल जलवा दिखाना है तो ये गाना तो सुनना पड़ेगा। झलक दिखला, जा भी दिखलाइए जी अपना झलक यानी कि मैसेज करके।

आते जी झलक दिखला जा, एक बार आ जा जा जा जा जा। फिलहाल हम आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए आ गए हैं। तो अब आखिरकार बढ़ते हैं आप सभी के मैसेज की तरफ कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है आज के शाम, और कौन बनते हैं विनर, और किनको मौका मिलेगा 7 अजूबे पार्क घूमने के।

चलिए देखते हैं आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज का कड़क सवाल यही है कि भारत की पहली फिल्म का नाम आपने बताना था, कौन सी थी भारत की पहली फिल्म?

0: प्रदीप जी का कहना है कि बस हरिश्चंद्र, लेकिन ये पूरा नाम नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए हैं। और राइट आंसर के साथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि राजा हरिश्चंद्र भारत के पहली मूवी थी। ओके
1: हर धड़कन,
0: तो आप बनते हैं आज इवनिंग मस्ती शो के विनर। अगर देखिए आप सात अजूबे पार्क जाना चाहते हैं, तो भैया मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी को कि 31 तारीख तक ही वैलिड है कार्ड, तो आप आइए स्टूडियो और अपना कार्ड लेकर जाइए और सात अजूबे पार्क घूमिए, इंजॉय करिए। साथ ही साथ कोमल जी का भी राइट आंसर आता है, आसिफ जी का भी राइट आंसर आता है, बबली अनजान जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है, और हिमांशु चौहान भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। राजा हरिश्चंद्र यानी कि भारत की पहली फिल्म है, और ये फिल्म यानी कि 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र मूवी जो कि भारत की पहली मूवी थी ये, और अगर आपने नहीं देखी तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वाली मूवी है, क्योंकि ये मूवी मैंने भी देखी है, इसीलिए आज मैंने आप सभी से क्वेश्चन भी पूछ लिया है। फिलहाल बबलू जी कनेक्ट होते हैं यानी कि राइट आंसर के साथ। सेकंड नंबर पे बात करूँ तो दूसरा नंबर होता है हमारे पास हिमांशु चौहान, तो आप आइए आप सभी स्टूडियो और अपना वाउचर लेकर जाइए और आप सात अजूबे पार्क घूमिए, एंजॉय करिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही अपनी ज़िंदगी में रॉक मचाते रहिए, घूमते रहिए, बाय, ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम, हालांकि आज बारिश नहीं है ये, तो ये मत सोचिए कि मौसम फिर से रुख लेने वाली है, बदलने वाली है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम आप सभी से कहना चाहेंगे, कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम जगह और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल एक और मैसेज है, हेलो रीना मैम, शाम जी का गाना सुनवा दीजिएगा। ओके, आज आप कीर्तन में जाकर सुनिए शाम जी का गाना, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर हनुमान मंदिर में, यानी कि लाइन पार में, तो आप वहाँ जाइए, कीर्तन होने वाला है आज जो शाम, खाटू श्याम जी का, तो वहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। और तो देखिए अगर आप चाहते हैं वाउचर जीतना, तो भैया तो आपको स्टूडियो तो आना ही पड़ेगा वाउचर लेने के लिए। अरे जी पूरा नाम, आपका नाम ले लिया वही काफी है, चलिए बाय।

0: तुषार कपूर की आवाज में
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली

0: सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आय व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ की फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं

0: बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ बहुत देखने
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: हाँ बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज कहते हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले डीलरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद।
5: नई बुलंदी देने वाला अभियान।
6: बांदा के रहने वाले धीरन सिंह ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि अब हर वक्त पानी आने से जीवन बहुत आसान हुआ है।
7: इससे पहले जब ये जल जीवन मिशन के नल नहीं थे हमारे गांव में, तब हमको पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। हम कुआं तालाबों से पानी लेकर आते थे, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था हम लोगों को। जब से ये हर घर नल लग गया है तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा हो गई है।
6: योजना के तहत 7 वर्षों में 12 करोड़ 60 लाख से अधिक घर जोड़े गए हैं। अभय निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा।
8: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कोलकाता में इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें लखनऊ से इंडियन ऑयल के निदेशक वित्त अनुज जैन और डॉ APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। श्री जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के सुझाव लेकर इस क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए।
9: हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कैसे इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को मीट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग माइंड्स हैं, वो भी चीज को समझें, क्योंकि हमारी कंपनी का और हमारी मिनिस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इंडिया अपनी नई एनर्जी नीड्स को मीट कर सकता है, और उसके हमें नए यंग बच्चों का सहयोग चाहिए।
8: गोरखपुर में आज प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय लखनऊ की ओर

0: से दूरसंचार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर समेत आसपास के 20 से अधिक जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लखनऊ के प्रधान नियंत्रक संचार लेखा अजय कुमार ने बताया कि सभी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान कराना विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो।
1: यहाँ पर पेंशनर्स की कोई भी परेशानियां हो उसको उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके प्रांत में जाके सुनना और उनको सरलता के साथ सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा दायित्व है। हमारे अधिकारी जो हैं लखनऊ और वाराणसी में तो तैनात हैं ही, गोरखपुर एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां पर लगभग 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। पेंशनर्स के लिए सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त कर सके उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह को आयकर विभाग की अपर महानिदेशक ऋचा रस्तोगी ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों, परंपराओं और जनमन को एक सूत्र में पिरोने वाली राष्ट्र की आत्मा है। मुख्य अतिथि ने पखवाड़े भर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। समारोह में आकाशवाणी लखनऊ के केंद्र प्रमुख आरबी सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं कई दिनों तक हुई भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण शाहजहांपुर में रामगंगा, लखनऊ में सई, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा, गोंडा में क्वानो और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनाएंगी विकसित उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, 23 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से राज्य की कई नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने कई जनपदों में कल हल्की बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में हैं, इस वक्त वहां पर वर्किंग हैं। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
2: थैंक यू सर,
3: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
2: वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
3: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
2: क्या बात है।
3: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
2: जी जी, प्लीज।
3: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
2: ब्यूटीफुल।
3: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
2: वाओ।
3: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
2: क्या बात है।
3: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
2: जी,
3: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
2: हाँ जी।
3: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
2: हाँ जी।
3: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं.
2: Alright.
3: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है. सो इस समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस.
2: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी. आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया. सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है.
3: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है हेल्दी है तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं
2: जी जी.
3: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
2: जी
3: हैं
2: जी जी जी.
3: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा
2: जी जी जी जी.
3: ये कॉमन चीजें हैं. कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए. ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं. तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए. ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें.
2: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया. और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
3: हाँ, डेफिनेटली यस. अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ. इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं.
2: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक.
3: Sort of, it's a different thing.
2: All right.
3: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं.
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: ठीक है. इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है. बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
2: जी.
3: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है.
2: ओके.
3: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है. कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
2: जी जी.
3: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह. अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं.
2: ओके,
3: ठीक है. बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी.
2: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए.
3: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं. जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
2: हैं उनको
3: नहीं पता होता है,
2: वो
3: क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
2: जी.
3: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले.
2: ओके.
3: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है. जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
2: हाँ जी,
3: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं.
2: ओके.
3: तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है. तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा. और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है. फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है. फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है. तुरंत लेटाए ना, उसको अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए.
2: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
3: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल।
3: वो कॉमन चीजें होती हैं। सबसे पहले
2: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
3: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं। हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
3: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
2: ठीक है,
3: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
2: जी,
3: है
2: जी, जी,
3: ठीक
2: जी,
3: है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
3: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
2: जी,
3: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
2: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
3: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
3: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
2: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002430।
6: अगला लोन आसानी से पाओ, कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार, दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पहली नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जिन मतदाताओं को विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाना तथा उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विद्यार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतंत्र

0: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। ये शिविर बुधवार तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। दावों और आपत्तियों पर नोटिस और उनके निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री यादव ने दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शमशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने और विद्युत शवदाह गृहों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली उपलब्ध है। धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों के पुनर्विकास और फुटपाथ निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके साथ ही 10 संपत्तियों को सील किया गया और 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कड़ी निगरानी बनाए रखें और दिल्ली मास्टर प्लान, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नगर निगम ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान राजधानी के सभी 12 जोनों में जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयां और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि अभी तक 15 विभागों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
3: सभी दिल्ली डिपार्टमेंट्स को अब तक हमने 15 डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, 50 से ज्यादा सर्विसेज कर दी हैं। अगले महीने तक 100 से ज्यादा सर्विसेज और 21 डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके ऊपर ले लिए जाएंगे।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी इतर जा रही बाइक यात्रा आज दिल्ली बॉर्डर पहुंची। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत करते हुए दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा मार्ग में निरंतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है।
4: इस यात्रा का सबसे शानदार पक्ष ये है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यात्रा निकली है और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी आते हैं, यहाँ से सीधा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए गए हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान भी सभी यात्री करेंगे।
0: इसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए पुनः प्रस्थान करेगी। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज गिरधर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उपमहापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निशुल्क रेबीज जागरूकता और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। NDMC ने बताया कि इस शिविर में पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबीज टीकाकरण और पशु चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही पशुओं की देखभाल और रेबीज की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की यात्रा के दौरान लीमा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने पेरू और पड़ोसी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति के विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय केवल आर्थिक योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं, जो भारत और पेरू के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
5: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
7: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत राजधानी के स्थापित और युवा कलाकारों को ICCR की प्रतिष्ठित होराइजन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ICCR के विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी अतिथियों और विद्वानों की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इस समझौता में ICCR से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए राजधानी में अध्ययन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की गई है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह भारत के शौर्य, साहस और स्वाभिमान की अमर चेतना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली की विश्वविद्यालय के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के 35वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ऐसे अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है और बहुत सारे देशों की यात्राएं इन्होंने की हैं, वहाँ की संस्कृति सभ्यता उसको समझा है, तो आज हमें लगता है कि इस टॉपिक के साथ न्याय ज्यादा अच्छे ढंग से हो पाएगा। वर्मा साहब, स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में आपका।
6: धन्यवाद।
5: आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र है, वहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करता है या उसकी समृद्धि के ऊपर,

0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है, प्रोग्राम आपका फेवरेट है। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक बार फिर से एक बहुत ही कमाल की सुपर डुपर अमेजिंग टैलेंटेड लेडी मौजूद हैं। एंड मैं डॉक्टर इनको बाद में बोलूंगा, पहले टैलेंटेड बोलूंगा क्योंकि बहुत कमाल का काम कर रही हूं। सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी ये हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी देती है बहुत अच्छे तरीके से। जब फर्स्ट आई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मल्टी टैलेंटेड मैम है, मतलब वो तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी सुपर वाली होंगी ये नहीं पता था। चलो मैम का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी उनके स्टाइल में जरा उनका हालचाल तो जान ले भाई, क्योंकि सब कुछ मैं बोलूंगा तो वो क्या बोलेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम है आपका।
1: हेलो,
0: जोरदार तालियां प्लीज मैम, टेल मी कैसे हालचाल?
1: मैं बढ़िया हूँ। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 89.6 FM पे, और ये है दूसरी बार हम आए हैं। और क्या करने आए हैं बताइए आनंद जी, हम क्या करने
0: आज
1: आए
0: मैम के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा। देखो यार, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट होने वाली है वेरी वेरी सून, तो मैंने सोचा मैम को बुला के पहले थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं,
1: थोड़ा सा। आज हम आपको ही, आपका प्री वेडिंग होता है ना, उसी तरह प्री नर्सिंग शूट करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि बच्चा होने का प्रोसीजर क्या है,
0: Oh my God,
1: कैसे कराया जाएगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, किस किस केस में क्या कराया जाएगा,
0: भाई
1: आपके सारे डाउट्स क्लियर कर।
0: मुझे मारो, ये सीरियस है भाई। वेल, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, और इसी जोक सपाट और अच्छी बातें होंगी। देखो, काम के साथ साथ ना थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो है, यहाँ पे हम आपको सुनाई दे रहे हैं, और शायद आप हमें मन की आंखों से देख भी रहे हो, क्यों मैम? और मजे की बात पता क्या है, डॉक्टर आशिका मैम ना सिर्फ जानकारी अच्छी नहीं देती, बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो दूसरी अनाउंसर है मेरे साथ बैठी हुई है। लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा बोल के गई थी आपको, मैं वो क्लिप जरूर दिखाऊंगा, मेरे फोन में आज भी सेफ है। अच्छा मैम, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ वर्किंग है एंड आपका नाम वगैरह थोड़ा बता दूं।
1: जी, आई एम डॉक्टर आशिका गुप्ता, मैं पास आउट हूँ AMU की, प्रोडक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय MBBS एंड PG फ्रॉम देयर, एंड अभी मैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद, जो कार्ट रोड पे है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट।
0: दैट्स वेरी नाइस। एक खास बात ये थी यार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आशिका मैम का नाम पहले आ जाता है। ऐसा क्या बोला था हम दोनों ने लास्ट टाइम जो लोग इतना याद रखते हैं?
1: यार पता नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डॉक्टर।
0: कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं भाई, वो सीधा सीधा आपका नाम बोलते हैं, और अभी और कोई राशिका मेरे साथ में आई नहीं है यहाँ पे, ये भी सच है, मतलब शायद हमने कुछ तो अच्छा बोला होगा, शायद
1: अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर अस ना, कोई बात नहीं,
0: ये अच्छी बात
1: करेंगे, मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि बार बार साथ आने का।
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम दोबारा हैं तो शायद इस बार और ज्यादा लोग याद करें, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, राइट? ओके, सो आज मैम हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं सिजेरियन के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो आज ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आजकल सिजेरियन जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या है मैम, क्या लगता है?
1: एक्चुअली यस, सिजेरियन का रेट तो बढ़ ही गया है ना। अब रीजन में तो देखिए दोनों बहुत सारे रीजन है, बट मेजरली जो रीजन है ना, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, ठीक है,
0: सही बात है,
1: खान पान में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें थी, अब हमने आर्टिफिशियल चीजें सब इन्वॉल्व कर ली है। प्लस हम जब पेशेंट को आजकल एडवाइस करते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस बताइए कि किससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ये पुरानी लेडीज का रूटीन था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ रहा था, उनका जो काम करने का तरीका था वो इसी तरह का था कि पेल्विक फ्लोर खुलता था,
0: ठीक है।
1: प्लस थोड़ी पुराने जमाने की लेडीज

0: रफ एंड टफ हुआ करती थी, अभी exactly. हमारी जनरेशन थोड़ी छुई मुई है
1: और हमारी वाली क्या होगा पता नहीं
0: हाँ जी एग्जैक्टली कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अब डिलीवरी का, नॉर्मल
1: ए आई आ गया है ना,
0: डिलीवरी एग्जैक्टली
1: ऑप्शन आ रहा है अभी अभी लाइन लाइन में है.
0: तो इट इज ऑल दैट, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही आप मान लीजिए.
1: ओके ओके.
0: तो प्लस लास्ट टाइम पहले लोगों के पास सिजेरियन के इतने ऑप्शन नहीं रहते थे, ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही नॉर्मल डिलीवरी है घर पे देके या जैसे भी कराना है वो हो जाती थी, है ना. दूसरी चीज, आप अपनी दादी नानी को कभी टटोलना तो बताएंगी वो आपको अपनी हिस्ट्री की, बेटा मेरे ना 10 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, अभी 8 मेरे पास थे, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं 2 चले गए 8 है मेरे पास. बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे वॉन्ट 2 हेल्दी चिल्ड्रन. तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि यार बाय दिस वे या दैट वे वी हैव टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, क्योंकि हमारे पे बेबी के रिगार्डिंग हमारे से कोई भी मतलब कोताही बर्दाश्त ही नहीं है. तो फिर हमें भी एक प्रेशर रहता है, उस अंडर प्रेशर में हमें 100% रिजल्ट देना है, तो उस अंडर प्रेशर में भी थोड़े से सिजेरियन का रेट इंक्रीज हो जाता है.
1: ऑल राइट, सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया होगा मैम ने. अच्छा एक और चीज है मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आज भी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या, तरीके की सुनने को मिलती है वे चीजें, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस खुद भी पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन.
0: इट इज अ प्रेशर, है ना, मतलब आजकल प्रेशर हो गया है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके फायदे और नुकसान दोनों है. तो आप किसी की नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी देख ली हमने कि यार उसने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, बट आई वुड से कि देखो हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी के इंडिकेशन अलग है, तो इट इज नॉट कम्पेरेबल कि किसी की हो गई है तो आप दूसरी लेडीज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दें. अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, है ना, आपको भी पता है आई हैव ट्विंस, ठीक है, दोनों बच्चे मैंने ही जन्मे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, सिर्फ 1 मिनट का फर्क है, बट दोनों की प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, किसी को मीठा पसंद है किसी को नमकीन पसंद है. तो जब एक माँ के 2 जन्मे बच्चे एक से नहीं हो सकते, तो 2 लेडीज की प्रेगनेंसी एक सी कैसे हो सकती है.
1: एग्जैक्टली,
0: सो इट इज ऑल इंडिकेटेड, हर किसी का अलग अलग इंडिकेशन होता है. और नेचुरल डिलीवरी तो ऑब्वियसली सेफ डिलीवरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसे एनकरेज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली ये कहना कि यार नहीं यार नॉर्मली कराना है ये एम नहीं होना चाहिए. एम होना चाहिए एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा.
1: ऑलराइट. अच्छा मैम, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहले का खान पान, जैसे आपने अभी इंक्लूड भी किया कि बहुत डिफरेंट था, आजकल का खान पान बहुत अलग है, है ना. आजकल मैं आपकी वीडियो में भी देखता हूँ कि आज पपीता खाने का मन है तो क्या खाना चाहिए या नहीं चाहिए, आज टिक्की खाने का मन है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
0: ये अब हमें बताना पड़ रहा है. आनंद जी, ये सब चीजें तो मतलब बताने की थी ही नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, तो ये सब ये हमारे बताने.
1: मुझे इसलिए भी हंसी आ रही है, मैं सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बताइए, अब ये चीज और रहेगी थी लोगों को बताने.
0: मेरी पिज्जा की वीडियो है 1.3 मिलियन,
1: वही सबसे ज्यादा वायरल हुई
0: है ना, अब उसमें कुछ बताने की बात तो थी नहीं कि आप पिज्जा ना खाएं, बट लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि पिज्जा खाना है कि नहीं खाना है, लोग ये शेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग खा रहे हैं, तो हस्बैंड्स आर शेयरिंग टू देयर वाइफ, यार एक गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है नहीं खाना है, या फिर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो उन्होंने बताए. तो आप ये देखो, ये चीजें इस लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली ये तो माँ को पता होनी चाहिए, है ना. तो फिर सारा अब प्रेशर लास्ट में कि नॉर्मल, जब स्टार्टिंग से ही प्रोसेस हुआ तो हमने बेड रेस्ट किया, हमने प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव करी, अब लास्ट पे बर्डन माँ पे डाल के इट इज नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. सेफ माँ सेफ मदर, बस दैट शुड बी द गोल.
1: बहुत बढ़िया मैम, मुझे ऐसा लगता है ना इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी पड़ रही है हमें, है ना, स्पेशली लेडी को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतना सुपर फास्ट है, लड़कियों के पास टाइम नहीं है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उनको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. बट आप लोग जो उनको कहीं ना कहीं एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई ये चीज अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो रही है, और प्लस सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है कि वो अच्छी चीजें भी दिखा रहा है ना. कुछ लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी अलूल झुलूल बातें करने लगते हैं नॉर्मल थोड़े से व्यूज के लिए, बट उससे किसी की बॉडी पे किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है.
0: एक्चुअली एक्टिव भी डॉक्टर्स को इसीलिए होना पड़ा, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना
1: 100%
0: इंस्टाग्राम पे, तो वी हैव टू काउंटरैक्ट दैट. मतलब बिना डिग्री के कुछ भी, वहाँ डिग्री तो चाहिए नहीं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग देयर वेज, तो वी आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू कि भैया ये दिस इज द राइट.
1: एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि बहुत ही सही है मैम. और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग ये चीज इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मिथ दूर होंगे. और सिर्फ लेडी के क्यों, जेंट्स के भी बहुत जरूरी है मैम.
0: Exactly.
1: है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम तो ऐसा है भाई, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. मैम इसी बीच एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे. कई पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों बोल दिया, क्या उन्हें जल्दी थी या क्या था, मतलब रीजन आ जाता है ऐसे थॉट. हस्बैंड भी, बीवी भी, सबके मन में आता है.
0: या, ये बात सही है कि लोग बोलते हैं यार उसे जल्दी थी इसलिए सिजेरियन करके निपटा दिया.
1: हाँ, एग्जैक्टली.
0: बट मैं आपको बताऊं, जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बने थे, वी हैव बीन पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना. तो हम जब हुए थे, हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना, हमें बता दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे जीवन में कोई जल्दी काम बचा नहीं है. अभी मैं आपसे बैठी हूँ, अभी 5 मिनट बाद मेरे अटेंडेंट का फोन आ सकता है कि मैम एक पेशेंट लेबर में आई है, तो आई हैव टू रन. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब हमारे लाइफ में हमारे लिए टाइम बचा नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नर्सिंग होम नीचे हो, ऊपर डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन्हें क्या जल्दी है, आप मुझे ये बताइए. उनको तो इट इज अ फुल टाइम जॉब ना, पूरे दिन का जॉब. तो ऐसा नहीं है कि जल्दी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं. अब हम मदर और बेबी को सेफ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे कभी कभी लेबर प्रोग्रेस करते करते बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है, तो सिजेरियन लेना पड़ता है. कभी कभी बेबी की पोजीशन खराब हो जाती है, तो सिजेरियन लेना पड़ता है. प्लेसेंटा को कोई फैक्टर होता है, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्रीविया है, तो हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है. तो जल्दी नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हमारा आपसी, आप समझिए, तालमेल की कमी है. अगर आप 9 महीने किसी के वो पेशेंट हैं और आपको उन्होंने डील किया है, तो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है. तो कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा कि अनइथिकली जाके आपको भैया डायरेक्ट सिजेरियन के लिए बोल दिया. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि जल्दी की वजह से हम करते हैं. इट इज ओनली टू डिलीवर अ सेफ मदर एंड अ सेफ.
1: वेरी नाइस. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये डेफिनेटली ऐसी चलती रहेगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे. अभी डॉक्टर राशिका जी हमारे बीच में है, तो ऑफकोर्स काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट भी आती भी होनी चाहिए ना. मैम देखिए, अपने हॉस्पिटल से निकल के मेरे रेडियो हॉस्पिटल पहुंची है, जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है. तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, जरा जानते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा, मेरे मन में भी होता है कि डॉक्टर गाना सुनते होंगे. तो किस तरह का म्यूजिक अभी हमारे लिसनर्स को आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे? वो वही गाना प्ले करेंगे अभी हम. आपका फेवरेट कोई अच्छा सा गाना बता सकते हो? अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पे 80 वाला ट्रेंड कम बैक कर रहा है.
0: हाँ, 80s वाला कर रहा है, मैं भी बनाने वाली हूँ, रिसेंटली बनाने वाली.
1: मैंने वही भी देखा आपका, मैं सब कुछ तो आ गया यार, मैम का भी नहीं आया.
0: आएगा, बट देन अभी आप गाना बजाओ
1: कोई मदर से रिलेटेड हो. ओके, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना है आपने गाना?
0: नहीं यार, ये मदर से रिलेटेड है. डिलीवरी ऊपर मैं नीचे.
1: सॉरी यार, अभी ना एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है.
0: तो अरे वो वाला बजाते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है.
1: कौन सा?
0: हनुमान जी वाला. पार्वती
1: पार्वती पार्वती, पार्वती ट्रेंड है. हाँ, ट्रेंड में है अभी वो हनुमान अंश का ना. गाइज देखो, हम भले ही रेडियो वाले हैं, लेकिन हर गाने की इन्फॉर्मेशन हुई जरूरी नहीं होती. आपने गुनगुना दिया, मुझे पता है आपको याद आ गया होगा, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं. हम भी सुन के आते हैं मैम. बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा गाना है. इसके बाद वापस आते हैं मैं और राशिका जी. आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: सब कह। सच में ये गाना सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैम से पूछते हैं मैम को कैसा लगा। मैम आपको कैसा लगा?
1: बहुत मन पवित्र हो गया।
0: अरे वाह, इससे पहले मैम हमारा मन भी पवित्र था। आई डोंट नो मैम ने ऐसे बोला ना मन। एनीवेज गाइस, बैक टू पॉइंट, मस्ती मजाक चलती रहती है। लेकिन मैम आप ऐसे पहले डॉक्टर हो जिनके साथ हम इतनी मतलब इतने खुल के हम लोग बात कर पाते हैं, तो इतना फ्रेंडली माहौल आप कर देते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पहले से इतने फ्रेंडली हो क्या?
1: या डॉक्टर से फ्रेंडली नहीं होगे तो कैसे बनेगा? बट देन मुझे ऐसा लगता था जब भी वो सीरियल देखा था संजीवनी।
0: हाँ संजीवनी, exactly.
1: देखा था ना, तो वो कब से प्रतिमा बनी हुई थी दिमाग में कि बनना है तो ऐसे ही बनना है कि दो लोगों को खुशी दे सको, दो लोगों से बात कर सको, आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सको, तब तो बनो,
0: कंट्रीब्यूट दे सको।
1: माई फादर यूज टू से कि बेटा ऐसा करना कि छाप छोड़ के जाना। ठीक है, तो शायद एम वहीं से अपब्रिंगिंग वैसी ही है कि मुझसे कोई मिले तो कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स जरूर रहनी चाहिए। मुझे पेशेंट्स को भी, कभी पेशेंट कोई लूज हो जाता है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी या किसी तरह भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। इट इज ओनली कि वो मुझसे मिलने आया और मैं नहीं मिला।
0: वो बात में रिग्रेट सा फील होता है।
1: एग्जैक्टली,
0: समझ सकता हूँ मैम एक्चुअली। बट मुझे भी ये लगता है कि आप जब अपने मन से कोई चीज करते हो ना तो वो 100% उसमें रिजल्ट भी अच्छा होता है। देखो काम की बातें भी हो रही है और मैम से थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन को। बढ़िया इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे मैम।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है आपका। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मैम, अगर एक बार सिजेरियन हो गया है तो क्या अगली बार भी सिजेरियन ही होगा, जैसे कि लोगों के मिथ होते हैं।
1: यस बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम इसी मैसेजेस से भरा रहता है कि मैम सिजेरियन को इतना साल हो गया, क्या अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, क्या सिजेरियन कराना चाहिए। देखिये, पहली बात तो अगर आपके दो ऑपरेशन हो चुके हैं या दो से ज्यादा हो चुके हैं तो ये तो एक टोटल इंडिकेशन है, इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि दो सिजेरियन के ऊपर अगर हो चुके हैं तो तीसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा।
0: ओके।
1: और यदि एक सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी फिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपका पिछला सिजेरियन से कितना टाइम है, मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बेबी प्लानिंग। ठीक है। आपके टांकों की मोटाई कैसी है, यानी कि जो आपके सूचर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ट्रैक करते हैं वो कैसे हैं, प्लस आपका अभी जो बेबी है उसका वेट कैसा है, पेल्विक कंडीशंस कैसी हैं, पेल्विस मतलब यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है। ठीक है, वो सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। कोई कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है जो कि डिले करेगा आपका लेबर। ये सब फैक्टर्स ध्यान रख के, प्लस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहां हम सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन वाले को ट्रायल दे रहे हैं वहां पे सारी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की भी होनी चाहिए प्लस इमीडिएटली शिफ्टिंग टू सिजेरियन सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कहानी सुनाती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका लगभग 1.5 साल का पुराना सेक्शन था, अभी ट्विन डिलीवरी थी, रास्ता इतना डायलेटेड था कि अब नॉर्मल डिलीवरी कराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा रास्ता खुल चुका था। लेबर में ऑलरेडी पेशेंट थी तो मैंने डिलीवर कराया और ट्विन तो पहला बेबी तो डिलीवर हो गया नॉर्मली, बट यस आई न्यू कि दिस इज अ हाई रिस्क केस तो मैंने उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया, अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म। पहला बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सडनली गश ऑफ ब्लड गया, यानी कि जो पुराना स्कार था वो रप्चर हो चुका था। That ways I took a decision immediately, क्योंकि हम ओटी में थे, अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल दिया, तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया और तुरंत बेबी डिलीवर करा दिया, पीडियाट्रिशियन थे तो बेबी रिससिटेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मदर ऑल्सो से बेबी ऑल्सो से। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेटअप पे, ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया कि भैया सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप एक उस किसी के पास भी जाके, बट यस अगर एक सेटअप वेल इक्विप्ड है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इक्विप्ड है तो थिंग्स आर पॉसिबल और बीच में गैप ठीक है।
0: ओके। सो आई होप लेडीज आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।

0: होगा। और बाकी जो हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी है, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है। कई बार हमारी घर की बुजुर्ग का ये रूल है, उन्होंने वही फॉलो कर लिया। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई हो। और डॉक्टर राशिका जी हमारे साथ मौजूद है, एंड मैम कौन से हॉस्पिटल में आप वर्किंग है एक बार प्लीज बता दें।
1: मैं हूँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: ओके मैम, वैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पे मिलने की?
1: मैं 10 to 4 रहती हूँ। ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनली सेइंग कोई टाइमिंग नहीं होती, ये ओपीडी टाइमिंग है,
0: मतलब आपको कभी भी जाना हो सकता है।
1: यस आई एम अ 24 आवर्स अवेलेबल सर्वेंट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। क्योंकि
0: मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, सपोज अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कॉल आ गया
1: तो हम कल करेंगे, बाय आनंद,
0: बाय, ये बीच में हम खत्म कर देंगे। तो गाइस मैं जल्दी पूछ लेता
1: हूँ, पेशेंट्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट।
0: वाओ, ये मतलब आपके लिए है, ये आपकी प्रायोरिटी है ना, इसीलिए आपको इतना ज्यादा प्यार है। वो कहते हैं ना, काम के लिए आपके अंदर से डेडिकेशन आए फिर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट आप उनको देती हो, काम को देती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसे कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में उसका रिकवरी में कितना फर्क होता है, मतलब यू नो
1: सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी है ना। वो इंस्टा पे रील्स देखिए ना, 7 लेयर कटते हैं, एग्जैक्टली 7 लेयर कटते हैं,
0: ठीक है,
1: है ना, तो रिकवरी में समय तो लगेगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक एपिसियोटमी देते हैं जो एक हल्का सा कट होता है नीचे, ठीक है, तो रिकवरी ऑब्वियसली सी सेक्शन की लेट होती है, और नॉर्मल डिलीवरी की हम नेक्स्ट डे ही चला के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 48 आवर्स। बट सी सेक्शन में हम 3rd day या 4th day मोस्टली डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट भी थोड़ा डरा रहता है क्योंकि स्ट्रिचेस आए हैं और मेजर सर्जरी है, तो रिकवरी में तो समय है, मतलब समय डिफरेंस है।
0: ओके ठीक है मैम। अच्छा मैम, सिजेरियन का जो सीन होता है वो क्या कभी रिस्की भी हो सकता है? ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है यार नहीं हम नहीं कराएंगे, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा?
1: सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी, ठीक है, रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, 100% ट्रेन्ड हैंड्स में भी रिस्क होता है,
0: ठीक है,
1: बिकॉज इट इज सर्जरी। बट रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ नाम से नॉर्मल है, बट पीपीएच आपकी एपिजियोटमी दी है उसमें इन्फेक्शन, तो ऐसे रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस, बेबी को रिस्क, तो वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो देयर आर रिस्क इन बोथ ऑफ देम।
0: ओके, और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार सिजेरियन तो कितना आसान डिलीवरी है,
1: सिजेरियन आसान बिल्कुल नहीं है, किसने कहा सिजेरियन आसान है, लोगों को लगता है कि लेडीज बचने के लिए सिजेरियन करा लेते हैं, दर्द नहीं झेलने हैं, बट हु सेड आप एक बार सिजेरियन, और मोस्टली ये सब जो होता है ये उन लोगों को लगता है जिसने ये सब नहीं झेला है, मतलब मैं किसी को काउंटरेक्ट नहीं कर रही, बट मेल्स को ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट पेन, कभी उन्होंने मेंसेस का पेन नहीं झेला, हर मंथ मेंसेस आना, दिस नॉट नॉर्मल, वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट, बेबी को रखना, 9 मंथ की जर्नी, इट्स नॉट इजी, तो कैसे आप सिजेरियन को इजी कह रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स जस्ट अ ऑप्शन, मतलब 9 महीने उसने कितना सेक्रीफाइस किया आप सोच भी नहीं सकते, वो लेट भी नहीं पा रही है, वो खा भी नहीं पा रही है, उसको उल्टियां हो रही है, तो एक डिलीवरी का प्रोसेस अगर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया तो आप उसे कह रहे हैं कि बहुत आसान है, आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान बच्चा पैदा करना ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा कंसीव करना भी आसान।
0: मैम हर चीज में बहुत एफर्ट्स लगती है, ये तो बात है, और कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है। और दोस्तों हमारा भी मेन मोटिव यही है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राशिका मैम मौजूद है, और आज सिजेरियन पे बहुत सारी बात हो रही है, एंड बहुत जरूरी है मैम, आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपेरिजन भी है, और जो बहुत आसानी से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग चैलेंज देते हैं, कुछ लोग कुछ भी अड़गम सड़गम दिखाते हैं, लोग ठाक यूज करने लग जाते हैं।
1: मेरी फ्रेंड की नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी भी होनी चाहिए मैम, आपने ही कराई थी और आपको ही करानी है, यार ये कैसा चैलेंज है आप मुझे ये बताओ। चैलेंज ये होना चाहिए कि मैम बेबी और मदर मुझे सेफ चाहिए, आपके हैंड में आपने 9 महीने देखा है,
0: एग्जैक्टली
1: कॉम्पिटिशन तो यार कहीं नहीं है, और कोई रेस नहीं लग रही, सबको अपना बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए, सो इट इज ओनली कि भैया कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन से काम खराब ही होता है, जहां आप बच्चे कंपेयर करना शुरू करते हो वहां भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, मेरा बच्चा अलग है, मेरे बच्चे में अलग क्वालिटीज है, सो एवरीबडी प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट, सबके इंडिकेशंस अलग होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल प्रोसेस, हम चाहते हैं नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन ये कि उसका ऐसे हुआ था तो मेरा भी ऐसे होगा, प्लीज ये सब नहीं करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें, उससे कॉन्टेक्ट करें, जैसा भी है उसी से मतलब बात करें, एंड शी विल डिसाइड द बेस्ट फॉर यू।
0: ऑलराइट, बहुत ही अच्छे से मैम आपने सोशल मीडिया के के बारे में जानकारी दी और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे अवेयरनेस
1: exactly.
0: क्योंकि सोशल मीडिया पे दिन भर में 100 तरह की रील्स आती हैं, जरूरी नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, उसके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए उसने वो डाल दिया हो. तो सही, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी खतरे की निशान.
1: यार उसने डिलीवरी नहीं करानी, उसने बस रील्स के व्यूज लेके
0: मजे लेने वही बात,
1: हमें डिलीवरी करानी है.
0: अच्छा आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, मैम सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस तरह के लोग ने सोशल मीडिया पे देख के ये कर लिया, वो फिर आपने उसको समझाया अरे बाप ऐसे कैसे किया.
1: ऑब्वियसली यार मेरी अपनी ही रील देख के आते हैं कि मैम उसकी आपने नील लाइकर पे नॉर्मल डिलीवरी कराई थी. ठीक है, मैंने अभी कराई है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी बिकॉज उसको पैनक्रियाटाइटिस थी उस पेशेंट को, उसके लिए सिजेरियन करना वॉज लाइफ थ्रेटनिंग. तो उसके लेकिन रिस्क मैंने उसको एक्सप्लेन किए, मदर का रिस्क ज्यादा था तो वो सिचुएशन नहीं सुनते थे अपन पुराने जमाने में कि हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को.
0: हाँ, टीवी सीरियल में देखा है बहुत बड़ी.
1: तो कुछ उतनी खतरनाक तो नहीं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम सिजेरियन करते तो बेबी के लिए बहुत रिस्क होता. तो हमने एक रिस्क लिया, उसके अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि बेबी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है, इवन बेबी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है, बट वो रिस्क उसने एक्सेप्ट किए. एंड ऊपर वाले का करम था कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन, मदर वॉज फाइन, बेबी वॉज फाइन, बट उसने इतना रिस्क लिया. और उस वक्त हमारे लिए मदर ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नील लाइकर नो लाइकर पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई. बट अब कोई दूसरा पेशेंट एकदम वही रील देख के मेरे पास आ जाए कि मैम वो तो नील लाइकर पे, इट इज नॉट पॉसिबल ना.
0: एब्सोल्युटली
1: आई वॉज द वन हु डिलीवर्ड नॉर्मली, बट उस पेशेंट के लिए आई विल नॉट. कि अगर मदर हमें बेबी का रिस्क ले लिया, कुछ हो जाता भगवान ना करता, फिर हम ही लोग उसके लिए आंसरेबल होते ना. बट वो सिचुएशन अलग थी, तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट.
0: गाइस मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं और यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में. तो आप लोग प्लीज इसे सुनिए और आपको कैसा लगे अपने फीडबैक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैम से हम और बातें करें तो आप वो भी हमें बता सकती है मैसेज करके. हम भी एक शाउट आउट आपको जरूर देते हैं, बिग शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छी बात है और ये हर कोई नहीं करता है मैम. बट एक्चुअली इस टाइम ऐसा हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रहे, लोग नहीं मिल पा रहे, तो एटलीस्ट वो रील देखते उन्हें ये तो पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है. हम भी आपको बेस्ट विशेस देंगे और ये बंद मत करिएगा, अभी तो हमारा टाइम है तो जब तक तो शायद बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी है ना. सो बहुत अच्छी बात है मैम, वंस अगेन लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा
1: फील वेरी नाइस. मतलब हमें मिल नहीं पाता है बट मेरा मन अंदर से करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है.
0: Exactly.
1: बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, लेडीज नहीं पूछ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, बट आपका रेडियो घर घर में जा रहा है.
0: Exactly.
1: करना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है
0: बस.
1: तो आज की शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मतलब अपराइज करेंगी, कुछ ऐसी अंदर से बातें होंगी जो उन्हें नहीं समझ में आ रही होंगी कि यार ये मेरे साथ ही होता है क्या. तो मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये हर घर की कहानी है क्योंकि ये मेरे चैम्बर में रोज. तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर, एवरीबडी इज देयर. तो हम एक दूसरे का सहारा बने तो ज्यादा बेहतर है. मैंने बहुत सुन लिया औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मैं यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस सेनेटर, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी है स्मिथ को दूर करना भी. लास्ट में आपने बहुत मुद्दे की बात बोल दी है. एंड गाइस फाइनली अब हम लेंगे आपसे इजाजत, मैम को किसी दिन बुलाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे. डोंट वरी, मुझे पता है आप लोग मैम को बहुत अच्छे से जान चुके हो, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करते हैं. मतलब कैसा आपका जर्नी रहा ये अपना जो भी आपने किया अभी तक, उस पर हम बात करेंगे. उस पर वेरी नाइस, उस पर हम ये आपका फिर कोई मतलब मैम गायनोकोलॉजिस्ट बन के
1: नहीं
0: राशि का बन के आएंगे, सिर्फ अपनी आपने कैसे किया है अपनी लाइफ को. ये
1: गायनोकोलॉजिस्ट छोड़ के आती हूँ, वैसे भी उधर छोड़ के आती हूँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है. सो क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है बिकॉज शी इज वेरी बिजी है, और वो होना भी चाहिए भाई, अपने काम पे ही फोकस होना चाहिए. सो बट मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम जल्दी मिलते हैं वेरी सून, कुछ नया करते हैं. एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, एक अच्छा सा गाना छोड़ के जा रहे हैं, मैंने और मैम ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, तो ये गाना आपके लिए लगा के जा रहे हैं. और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मेरे से अगर कुछ पूछना है आपको, आप आना चाहते हो स्टूडियो तो मोस्ट वेलकम है. ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से. और बाकी मैम एक बार आप इंस्टा हैंडल बता दूं,
1: मेरे नाम से है डॉक्टर
0: राशिका गुप्ता. मैं इनका एक रील शेयर करता हूं पिज्जे वाला, बहुत हमने उसको आज हाईलाइट कर दिया है, तो आप वो क्लिक करोगे तो मैम के अकाउंट पे पहुंच जाओगे. बाकी के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. मैम मेरे साथ बोलो, रेडियो बजाते रहिए,
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो.
0: क्या बात है, इन्होंने तीन बार बोल दिया. चलो फिर मिलते हैं, बाय गाइस,
1: बाय,
0: थैंक यू.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
5: Annually, we have been meeting regularly.
6: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
5: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
7: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
9: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
10: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
9: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश के माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
11: So if you want to make more export,
12: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
13: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
14: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
13: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
14: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
15: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
14: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्ते। तो बहुत ही बहुत सत श्री अकाल, आदाब। और अब आपके साथ आ गए हैं अखिल अग्रवाल। हाँ जी, दिल से दिल तक अखिल संग खूब सारी मस्ती होगी और खूब सारा प्यार बटेगा, क्योंकि दोस्तों शाम का वक्त है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब थोड़ा मुस्कुराने का टाइम है, थोड़ा दिल की सुनने का टाइम है और थोड़ी सी मस्ती करने का टाइम है, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराना छोड़ दिया तो जिंदगी की खूबसूरती कम हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसी ही है, कभी कभी छलिया लगना चाहिए, कभी कभी बेगाना सा लगना चाहिए। थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। जिंदगी है 4 दिनों की, इसे दिल से जिया करो। और हाँ, कोई दिल की बात है तो फटाफट 9837896896 पर कॉल कर लिया करो दोस्तों।

0: चलिए दोस्तों, करते हैं अपना प्यारा सा सफर शुरू, क्योंकि अब है थोड़ी सी दिल की बातें और थोड़ी सी आपकी मनचाही। जो कहते हैं ना भाई साहब, आज मेरी मनचाही मुराद थी, ये वाला गाना आज प्ले हो जाता तो मैं जरा मन लगा के और अच्छे से सुन लेता। मेरा बहुत ही पूरा दिन जो है ना ऐसा हो गया है कि बस अब मुझे गाना चाहिए चाहिए। तो हाँ, ज़रूर ज़रूर आपका ही गाना प्ले होगा। चलिए पहले बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, क्या कहते हैं वो हमसे आज। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? सर क्या कर रहे हैं इस समय आप? तो वो आपने पकौड़ी खाई है नहीं खाई? सर पकौड़ी तो खा लेनी चाहिए थी, पकौड़ी को क्या इसमें गलती है पकौड़ी की। तो नरेंद्र जी इस समय ये बताइए, बारिश का पता चला, ये इतनी बारिश क्यों हो रही है? कहाँ क्या ऐसा कौन सा घड़ा फूट गया है जो बारिश यहीं बरस रही है?
1: बारिश भैया सभी जगह बरस रही है।
0: तो सभी
1: इस
0: जगह,
1: बारिश ना इस बारिश ना उत्तर प्रदेश के अंदर 100 आदमी मरे हैं।
0: तो इसका मतलब ऊपर से जो टंकी चला के भूल गए हैं वो उनसे कहना पड़ेगा जी अब तो बंद कर दो साहब, अलार्म बज रहा है यहाँ। बिल्कुल सही सर। और नरेंद्र जी आप बताइए, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शायरी या कोई ऐसी कविता जो आप कहना चाहेंगे आज? आपकी आवाज हल्की आ रही है नरेंद्र जी, थोड़ा सा कम से कम आवाज ऐसी हो जाए कि सभी के पास पहुंचे। होल्ड रखने के लिए भेज दिया है नरेंद्र जी ने, मैं होल्ड कर दिया हूँ आपको अपनी वॉइस। हाँ नरेंद्र जी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, एकदम आवाज निकल के आई है, खिलकर आई है अब। हाँ एकदम तड़कती हुई। अच्छा ये बताइए नरेंद्र जी, कभी आप कभी किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो और जो आपकी शर्ट है उसका बटन टूटा हुआ मिला आपको, हुआ कभी कुछ हुआ ऐसा? या कहीं जा रहे हो और अचानक शर्ट का बटन जो था वो टूट गया?
1: ऐसा तो अभी हम पहले ही तैयार अपने कपड़े अपने हाथ से देखते हैं, प्रेस करे हुए हैं, कोई चीज टूटी फूटी तो ना है।
0: और अचानक टूटी है? कभी अचानक टूटी है?
1: अचानक में जब टूट जाएगी तो फिर तो भैया पिन का इस्तेमाल होगा, सेफ्टी पिन।
0: तो इसका मतलब आप भी सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर चुके हैं।
1: हाँ,
0: सही है साहब,
1: भिंडी की सब्जी खिलाई नहीं खिलाई कमल जी को?
0: कमल जी को भिंडी की सब्जी। अब तो कमल जी बताएंगे कि उन्हें भिंडी की सब्जी मिली भी या नहीं मिली।
1: आनंद जी के पिताजी का उस तरह चला।
0: आनंद जी के पिताजी का अभी चल रहा है, बार बार प्रोसेस चल रहा है और जा रहे हैं। आनंद जी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, रोज़ जाते हैं जीआरपी ऑफिस और वहाँ से डिटेल्स लेते हैं बहुत। तो और बताइए अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज, अपनी पसंद का या हमारी पसंद का?
1: पसंद
0: तो चलिए ज़रूर नरेंद्र जी, अब आप इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और बात हुई है तो अपनी पसंद का एक बढ़िया सा गाना आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं। ओके तो श्रोताओ हमारे साथ जुड़े थे नरेंद्र जी, जो बिल्कुल कह रहे थे अरे अखिल जी आप कहाँ हैं, 3-4 दिनों से बात नहीं हो रही। मैंने कहा हम सर यहीं हैं, बस कभी कभी तो जाना पड़ता है ना भाई, कभी कभी तो इधर उधर भागना पड़ता है। तो चलिए एक गाना डेडिकेट करते हैं, आप भी कहीं इधर उधर ना जाएं भाई साहब, आराम से स्टीयरिंग पकड़ें, सीट बेल्ट जरूर पहन के रखें। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सीट बेल्ट ज़रूर पहन लीजिए और गाड़ी भी आराम से चलाइए। 9837896896 पर कॉल करिए और बढ़िया सा एक अपना पसंद का गाना ज़रूर सुनिए, मन भी हल्का होगा दिल भी।

0: ये लाए।
1: देखो देखो भाई साहब, हम कितने सारे गाने आपके लिए लाए। हाँ, थोड़ी सी आवाज ऐसी जा रही है, मगर कोई बात नहीं साहब, इतने बढ़िया बढ़िया गाने सुनेंगे तो कुछ तो अंदर से आवाजें निकलेंगी। और हाँ, ये जो शो है ना, वो है ही इसीलिए कि आपकी बातें ज्यादा और मेरी बातें हो थोड़ी कम। तो चलिए, अपने कॉलर से कनेक्ट होने का टाइम हो गया है, मगर उससे पहले एक बात बताइए, जब शैतानी चल रही होती है तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में भी एक बंदा ऐसा जरूर होता होगा कि भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, एकदम पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। और जब बिल देने की बारी आती है तो वही दोस्त कहता है, यार जरा अपना गूगल पे तो निकाल दियो भाई। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो हो तो जाता ही होगा, कंफर्म है भाई साहब, कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। चलिए अपने दूसरे कॉलर से बात करते हैं, वो भी क्या कहते हैं आज, उनकी भी दिल की बात सुनते हैं। चेहरे पे मुस्कान रखो, दिल में अरमान रखो, जिंदगी छोटी सी है दोस्तों, इसे हमेशा आसान रखो। चलिए बात करते हैं अपने नए कॉलर से। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
2: हम ठीक है भैया जी, आप बताइए कैसे हैं?
1: बढ़िया बढ़िया। आपका क्या नाम है और कहाँ से बात कर रही हैं मुरादाबाद से?
2: मेरा नाम है स्वाति और मैं लाइन पार्क मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
1: तो स्वाति जी, आज आपने जो है, आपको बाहर निकले तो छाते की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ये बताइए पहले।
2: भैया आज तो बहुत अच्छा मौसम था वैसे।
1: आज मौसम अच्छा था, कोई गली में ऐसा पानी वानी भरा जो निकल गया हो आपकी गली में, या बिल्कुल सही थी आपकी गली, सूखी रही?
2: नहीं, कल हुआ था, अब ठीक हो गया है।
1: अब कल था बिल्कुल, अब जल भराव खत्म हो गया है।
2: जी जी जी।
1: तो जरूर जरूर। तो कोई ऐसी इसी मौसम पे कोई ऐसी शायरी जो आपके आसपास गूंज रही हो, जो आपके दिल से निकल रही हो, तो जरूर सुनाए हमें।
2: नहीं भैया, मौसम की तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी शायरी है।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर।
2: बिना बात के ही रोटने की आदत है, बिना बात के ही रोटने की आदत है, अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहे, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने तो एकदम ये तो आपने इतनी बढ़िया शायरी पढ़ दी। और आप कहीं ऐसी डर रही थी कि मैं कैसी शायरी बोलूंगी, है?
2: जी भैया, पहली बार बोला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा।
1: बहुत ही बढ़िया, नहीं पहली बार भी इतनी अच्छी शायरी बोली है, कुछ पूछो। अच्छा, आप ये बताइए स्वाति जी, क्या
2: जी
1: आपको डांडिया खेलना पसंद है?
2: डांडिया खेलना पसंद है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है।
1: मौका नहीं मिल पाता है? क्यों, मौका क्यों नहीं मिल पाता है? मतलब आपको वो खेलने वाला कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, या सिर्फ अपने काम में इतना बिजी हो जाती हैं, मशगूल हो जाती हैं कि फुर्सत नहीं मिल पाती है?
2: भैया बच्चों के साथ में पूरा दिन पता ही नहीं चलता कब गायब हो जाता
1: है। हाँ, तो बच्चे भी कहते होंगे कि मम्मी आप सारा डांडिया हमारे साथ खेल लेती हो, आप बाहर जाके खेलो, सारे डंडे आपने हमें बजा दिए हैं।
2: जी भैया,
1: ऐसा है क्या?
2: नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आइए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है।
1: हाँ, तो आप हस्बैंड के साथ डांडिया खेलिए फिर एक बार, बच्चों के साथ नहीं खेले तो। चलिए चलिए, तो आज लॉकडाउन में खेले हैं आप?
2: हाँ जी।
1: तो भाई साहब, वो दूसरा डांडिया होगा?
2: नहीं नहीं भैया, वो डांडिया नहीं था, वही डांडिया था जो होता है।
1: चलिए, तो बहुत ही बढ़िया है, आपने खेला कम से कम। एक्चुअली ये क्या है ना, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें आप इतना हंसते गाते और गुनगुनाते हुए आराम से एंजॉय भी करते हैं और थोड़ा सा फन भी हो जाता है। तो चलिए, कोई गाना आज हम डेडिकेट करें, या आप कोई चाहती हैं कोई गाना आपके दिल के पास हो?
2: नहीं, आप ही कर दीजिए।
1: तो चलिए, एक बढ़िया सा गाना सुनाते हैं। और बहुत अच्छा लगा स्वाति जी, आप कनेक्ट हुए और आपने अपनी दिल की बात रखी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: भैया जी। ओके, गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: तो श्रोता, हमारे साथ जुड़ी थी स्वाति जी, जो कह रही हैं कि हाँ, डांडिया खेलना उन्हें पसंद है और इस बार भी ज़रूर वो डांडिया खेलने जाएंगी। तो अगर आप लोगों का भी प्रोग्राम बनना है तो ज़रूर बताएं हमें, कॉल करें और अपने दिल की बात तो ज़रूर बताएं। तब तक ये लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक और खूब सारी बातें होती रहेंगी 9837896896 पर।

0: अरे दे दो जी, दे दो, सवालों का भी जवाब दे दो, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं ना कि इंसान कहाँ कहाँ तक जवाब दे। एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। हाँ जी, यहाँ हो रही है दिल से दिल की बातें, आपका ही अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहना जरूरी है। मंजिल मिले या ना मिले, खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। तो भाई साहब, चलते रहना है और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि भाई साहब पानी अभी भी भरा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कोई जगह है आपकी नॉलेज में, चाहे कांठ रोड हो या रामपुर रोड हो या फिर हो दिल्ली रोड, तो ज़रूर बताएं कि वहाँ संभल के चलें और बच के भी चलें। कहते हैं ना कि कॉलर से बात करते रहने चाहिए, पता चला कि कॉलर ही कहते। भाई साहब आपने तो मुझे कॉल पे छोड़ के दुनिया भर की बातें कर ली, मगर हाँ होता है होता है। चलिए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: मेरे प्यारे प्यारे सरकार, प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं साउथ इंडिया से तो नहीं बात कर रही हैं? एकदम आपका एकदम ऐसा गुड इवनिंग ऐसा आया भाई साहब निकल के कि आज ही इडली और सांभर खाने को मिलेगा। तनुषी जी कैसी हैं आप?
1: आपसे बात हुई तो बढ़िया ही हो गई।
0: और महाराष्ट्र में इस समय कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ तो जी 3 दिन से छाता लेके घूम रहे हैं। आप भी ऐसी ही हो रहा है क्या आपकी तरफ भी?
1: अरे सर, वो छाता हमें चाहिए, पर हमारे यहाँ छाता इस्तेमाल ही नहीं हो रहा।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा वहाँ भी रिमझिम होगी। फिर आप भी फोन करके कहोगे कि भाई साहब हमारे यहाँ भी बारिश रुकवा दो जरा।
1: नहीं, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया ना कि आप, मुझे पता चल गया आप क्या बारिश हो गई, इसलिए मैंने बोला सर आप किधर से की बारिश थोड़ी हमारे यहाँ भी भेज दीजिए।
0: हम आपके पास सिर्फ गाना भेज सकते हैं भाई साहब, इतनी पावर नहीं है हमारे पास कि हम वहाँ से पानी उठाएं और आपके पास भेज दें। चलिए चलिए चलिए, आज जितने भी भगवान से हम यही कहेंगे ऊपर की भैया जितना हम पे बरसाया उतना यहाँ भी बरसा दे जहाँ पे तनुषी जी रहती हैं। तो क्या करती हैं आप तनुषी जी? अरे क्या बात है, शास्त्रीय संगीत। और कोई शस्त्र वस्त्र भी साथ में लेके चलती हैं क्या? कोई नहीं, आप कोई शस्त्र भी साथ में लेके चलती हैं कि शास्त्रीय संगीत सुन करती हैं तो?
1: मतलब
0: आप कोई नहीं, मतलब आप एक बढ़िया सा गाना सुना दीजिए।
1: हाँ, तो सर सॉन्ग का नाम है आज लता मंगेशकर जी का जन्म दिन है, तो हमारे जो सॉन्ग है पर मैं गाने के बाद उनके लिए एक श्रद्धांजलि और उनके लिए वो गाना है कि उनका लगा कर आज जरा कुछ बताना है। काले बहार
0: जरूर जरूर, किसे डेडिकेट करना चाहेंगी ये गाना आप?
1: डेडिकेट तो पहले आपको, आपके लिए रहेगा, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी है, राकेश जी, शिमला से गंगाधर सावनकर जी, रमेश प्रजापति जी, राम बाबू शर्मा जी है, और लास्ट सभी श्रोताओं के लिए सर।
0: क्या बात है, मैं तो सोचा था आने वाले टाइम में शाहरुख खान और सलमान खान का नाम आप लेना भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा मतलब गाना गाया है और आपका शास्त्रीय संगीत का आपको शौक है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद धन्यवाद तनुषी जी। तो चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और इस मौसम को और भी कहते हैं ना एकदम रिमझिम वाला कर देते हैं, रंगीन करते हैं। बाय बाय। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़ी थी एकदम एनर्जेटिक, मतलब कहते हैं ना, मुझे लग रहा है ये अभी भी किसी कोई गाना गा ही रही होंगी। जो गाना खत्म हो गया तो सोचा चलो जी FM पे बात कर लेते हैं। तो चलिए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं, अगर हाँ आपकी भी कोई दिल में ऐसी फरमाइश है तो ज़रूर 9837896896 पे कॉल करें, या फिर मैसेज करके ही बता दें, कोई बात नहीं। कोई विश करना हो किसी को, हैप्पी बर्थडे भी बोलना हो तो भी चलेगा साहब, क्योंकि गाड़ी भी आपकी है और ये गाना भी आपका है। तो करते हैं थोड़े से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे फिर खूब सारी गुफ्तगू।

0: प्यार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और जहां खूब सारी बातें हो रही हैं आपकी और हमारी, किसकी, दिल की। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई साहब, जब पार्टी चलती है और लंबी चलती है तो कैटरिंग वाले की तो शामत आती ही आती है, क्योंकि वो बेचारा थक जाता है भाई साहब। अंदाजा होता है 500 लोगों का और आ जाते हैं गेस्ट 800, तो उसकी तो लगनी है वाट। मगर कहीं कहीं इतनी अच्छी वाइब्स हो जाती हैं कि इंसान खाना भूल जाता है, सोचता यार थोड़ी देर और डांस कर लेता। हाँ जी, हो जाता है, पार्टी में आप जाते हैं और खाना खाना ही भूल जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे कॉलर से, पूछते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आज अपनी दिल की बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, क्या नाम है आज आपका?
1: सर मैं अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आपको पता ही चल रहा होगा, आप शो सुन रही हैं तो आवाज़ से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। अच्छा, मगर आपकी आवाज़ सुन के हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा कहीं बिजी हो, क्या हो गया है?
1: बिजी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी मतलब
0: तबीयत
1: खराब कर रही
0: है। तबीयत खराब होना भी बिजी होना ही होता है, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकती हैं।
1: हाँ ये तो है, क्योंकि इस टाइम तो मौसम चेंज हो रहा है ना, बारिश हुई है तो मतलब भीग गई थी तो तबीयत खराब हो गई।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कहाँ रहते हैं जहाँ आप ज्यादा भीग गई?
1: घर पे ही रहते हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा है ना घर का, तो इसलिए काम करने में देर बिताते हैं।
0: मतलब भीगती रही काम भी करती रही, भीगती रही काम भी करती रही, क्या बात है।
1: हाँ क्योंकि
0: तो
1: बारिश हो रही है ना 3 दिन से।
0: हाँ हाँ ये बात तो है, ये तो देखो साहब हम झूठ बोल नहीं सकते, बारिश तो सच में है, चाहे आप स्टूडियो में हो, घर में हो या अपने ऑफिस में हो, बारिश तो आपको मिली ही मिली है। तो कुछ शायरी सुनाना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे ऐसा कुछ जरा आज?
1: बिल्कुल
0: जरूर जरूर, थोड़ी आवाज आप अपनी थोड़ी सी तेज कर लीजिए।
1: सर, मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या?
0: नहीं, आवाज बिल्कुल सही आ रही है आपकी, थोड़ी सी और लाउड कर लीजिए, हमारे दर्शक और अच्छे से सुन लेंगे सब।
1: जी सर मैं कोशिश करती हूँ। सर मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी शायरी है ये।
0: हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, आपने शायरी की पहली ही बता दी, अच्छी है तो हम सुनेंगे जरूर।
1: बूंदे गिरी जो कागज पे तो लफ्ज जरा से बह गए, बूंदे गिरी जो कागज पे तो लफ्ज जरा से बह गए, हम जो लिख ना पाए जुबा से वो सारे आंसू बह गए। एक उम्र गुजर गई तुम्हें ख्वाबों में मुकम्मल करते करते, एक उम्र गुजर गई ख्वाबों में तुम्हें मुकम्मल करते करते, पर हकीकत के उस पन्नों पर हम आज भी अधूरे रह गए।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने तो एकदम एक शायरी में सारी बातें कह दी दिल की, बहुत ही
1: अच्छा लग,
0: बढ़िया। तो किसे डेडिकेट है ये शायरी, कौन से दोस्तों को डेडिकेट है आपके?
1: मेरे दोस्त तो वही है, आप तो जानते हो।
0: हाँ जी हम जानते हैं, मगर आप एक बार अपने दोस्तों का नाम लीजिए, कम से कम जो दोस्त आपको सुन रहे हैं ना वो ये कहेंगे अरे कैसी तबीयत है और क्या कर रहे हो।
1: मुझे सॉन्ग सुनना है, तो देखती हूँ तेरी तस्वीर को, और ये सॉन्ग मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए सुनना चाहती हूँ।
0: हाँ तो लाइवा जी आप अगर सुन रही हैं ना, तो आपकी जो सहेली है ना जो इस समय बेचारी बुखार में भी याद कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं चुप चुप देखती हूँ तेरी तस्वीर को, तो जरा याद कर लीजिएगा अपनी फातिमा जी को भी आप।
1: सर इस टाइम पे मतलब वो बिजी है ना, तो बात मेरी बहुत कम हो पा रही है उनसे, लेकिन हो जाती है। हाँ
0: चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही अच्छी लगा आपकी, आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी फातिमा जी, और आपके बोलने का भी अंदाज बहुत अच्छा लगा।
1: जी सर, थैंक यू, आपको अच्छा लगा।
0: तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम 89.6।
1: जी सर थैंक यू, बाय।
0: बाय बाय। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी थी फातिमा जी, जो इस समय बारिश के चक्कर में, कह रही जी इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि मैं तो थोड़ी सी बीमार पड़ गई, तो आप जल्दी से सही हो जाएं और खूब सारी शैतानियाँ करें जो करती आ रही हैं।

तो आपकी भी कोई दिल की फरमाइश है या बात है तो 9837896 बिल्कुल तैयार है साहब, एकदम कॉल करें। छटदनी अगर एक बार कॉल मिस हो जाती है तो दोबारा भी कॉल करें, क्योंकि कभी कभी जब दिल से आवाज़ें निकलती है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर पहुंचती ज़रूर हैं। तब तक लेते हैं इस गाने का आनंद। और आनंद से मुझे याद आया, भाई साहब जब आपको भी आनंद लेना है तो क्यों इतनी देर।

जल्दी क्यों है, जल्दी से फोन उठाएं और फटाफट 9837896896 पर कॉल करें। कुछ चीजें हैं, कुछ पासेस हैं जो आपका भी वेट कर रहे हैं। अगर आप उस लकी विनर में रहे तो जरूर जरूर आपको भी 7 अजूबे का, कहते हैं ना, वहाँ के दीदार करने का मौका जरूर मिलेगा, और वो फ्री में जो एंट्री पास है वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो आप कॉल मिलाते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरीके से आपसे बात जरूर हो जाएगी।

0: हाँ जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और आज का ये शो है पावर्ड बाय न्यू जैन टायर सॉल्यूशन, कांट रोड नियर पीवीआर सिनेमास, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी का कुछ भी टायर से संबंधित कार्यक्रम करवा सकते हैं और हाँ जी टायर भी बदलवा सकते हैं, बहुत ही आपके पॉकेट के अनुसार। तो कोई बात नहीं, आप एक बार मौका ज़रूर दें और एक बार सर्विसेज लेके भी देखें कि हाँ जी क्या है और क्या नहीं। चलिए साहब, अपने लास्ट कॉल को कॉलर को लाइन पे लेते हैं और थोड़ी सी उससे भी गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में ना हर किसी की अपनी कहानी है। किसी के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास बहुत लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं, किसी के पास सपना है लेकिन मौका नहीं, और किसी के पास मौका है लेकिन हिम्मत नहीं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और की ज़िंदगी से मत कीजिएगा बॉस, क्योंकि आपकी अपनी ही एक कहानी है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को मत तोलना, हर किसी की कहानी अलग है, बस अपने सफ़र पे चलते रहना। तो चलिए इसके साथ अपने लास्ट कॉलर, क्योंकि भाई साहब 9 बज के हो गए हैं 59 मिनट, हाँ जी 59 मिनट, सिर्फ 10 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो उससे पहले अपने कॉलर से बात करेंगे खूब सारी और फिर चलेंगे जी। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप सबकी दुआएं।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये हमारे सभी श्रोताओं को बताएं।
1: हमानी सिंह, लालपुर मुरादाबाद।
0: क्या बात है, इस समय क्या कर रहे हैं आप, मौसम का आनंद ले रहे हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं?
1: सोने की तैयारी तो बहुत पहले कर चुके हैं, थोड़े से सुबह का अखबार पता खाने का पन्ना पढ़ने का उधर पढ़ना।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज कोई एक कुछ कुछ जो आपके मन में आ रहा है, कोई ऐसी दिल की बात जो आप कहना चाहते हैं?
1: तुम्हारा तो ही ऐसा है कि कुछ टाइम तो हंसी आ जाती है,
0: कुछ टाइम हंसी आ जाती है आपको? कैसी हंसी आ जाती है, दिल दिल को खोलने वाली हंसी आती है या दिल को बंद करने वाली हंसी आती है आपके लिए?
1: देखो हंसी का हंसी कई तरह से होती
0: है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
1: किसी को देख के हंसना, खुद दिल में हंसना, किसी को देख के हंसना और किसी को दिल में हंसना, सामने बैठा है उसकी फरियाद को देख के हंसना।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज लगता है खाने में मुझे लगता है दाल मखनी मिली होगी। या फिर वही लौकी और तुरई खा रहे हैं क्या साहब?
1: ना लौकी तुरई ना खाए, लौकी बनी रखी है, तुरई तैयार ही
0: है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गाने के बोल?
0: हाँ गाने के बोल गा के सुना दीजिए सर आज।
1: नहीं पहले एक शायरी सुनाएंगे, उसके बाद आपको बोल सुनाएंगे।
0: अच्छा अभी एक शायरी सुनाएंगे आप?
1: अरे आप तो भी सुनाएंगे ना।
0: तो जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: पहले शायरी आप सुनाओ,
0: पहले हम सुना दें।
1: हाँ,
0: तो चलिए पहले हमारी शायरी एक आपके लिए, मुश्किलों से कह दो थोड़ा संभल कर आए, हमने अब मुस्कुराना सीख लिया है, रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों हमने चलते जाना सीख लिया है।
1: सफर आखिरी है, सफर आखिरी है, कोई उनसे कह दे।
0: क्या बात है,
1: सफर आखिरी है, कोई उनसे कह दे, सब उठाने लगे हैं मेरा, सजा के भुला के गुजरे दिनों की अरमान गिराने लगे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप तो एकदम मुझे लगता है इंस्टेंट शायर है भाई साहब, आपने एकदम सुना और सामने एकदम अपनी बात एकदम रख दी, क्या बात है।
1: आदमी की फरमाइश आदमी पूरे नगर पाए तो उससे आदमी व्यवहार।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने अपने दिल से एकदम बात रखी, कहते हैं ना कभी कभी जो बातें एकदम दिल से निकल के दिल तक पहुंचती हैं तो वैसी ही बातें हैं।
1: कहते हैं भगवान एक दिन सुबह से लेकर शाम तक जरूर निकलवा देता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो
1: सरस्वती माता गले में गजमान हो जाती
0: है। बिल्कुल सही कहा आपने सुमन जी। तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: कभी हंसना है कभी रोना,
0: कभी हंसना है कभी रोना है, जरूर। क्या बात है, गाना भी आपने बहुत ही बढ़िया सिलेक्ट किया है, हंसना है कभी रोना है कभी, तो जरूर इस गाने को करते हैं फरमाइश को आपकी पूरी और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और कॉल करते रहें।
1: ओके भाई,
0: ओके जी। तो साहब देखिए जब चलते चलते आपके पास कॉल आ जाती है और वो भी दिल से दिल की बात होती है, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आज हुई है खूब सारी बातें, और कहते हैं ना आज ये जो सफ़र है हमने पूरा खूब हंसी मजाक शायरी और खूब सारी बातें करी, जो साहब जो ज़िंदगी को थोड़ा करीब से समझने की भी कोशिश की है। बस जाते जाते एक बात दिल में रखिए, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश हमेशा की जा सकती है। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, और अपने सपनों के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। हाँ जी, गाड़ी बिल्कुल आराम से चलानी है, भले ही आप फ्लाईओवर पे हो, मगर बहुत प्यार से टर्न लेना है, क्योंकि जल्दी जल्दी कोई ना कोई आपका घर पे इंतज़ार ही कर रहा है। तो आज खूब सारी बातें हो गई हैं, और वो बातें बिल्कुल दिल तक पहुंची हैं। तो मिलते हैं फिर कल नई शाम को, कल नई सारी बातें लेके और नई मुस्कान के साथ। हाँ जी, सब नई मुस्कान के साथ। ये जो मौसम है ना बहुत ही मस्त है, थोड़ा सा इन्जॉय करें, अपने पसंद के गाने सुनते रहें और बताते भी रहें कि हाँ जी आज क्या बजना है और क्या नहीं। तो ज़रूर चलिए साहब, इस गाने को हंसना है कभी रोना है, और प्ले करके अपने इस शो को देखते हैं अंतिम चरण पर। तो बाय बाय, गुड नाइट, और कीप ड्रीमिंग, कीप एंजॉय।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A4

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.